0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: Irshad Autos and Honda Showroom Mehrapur. Honda Motorcycle Jupur Aitmat and Ba Akhtiar Idaro. Irshad Autos and Honda Showroom Mehrapur. 9 Motorcycle G Sale. Company Ajay Mokarad Kar Rate De Dastyabahe. Service Center Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area. Jite Honda Motorcycle G Behtreen Service Kai Vendiahe. Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts. Khususi Riyayat Te Majood. Irshad Autos Te Panji Honda Motorcycle G Karayo Training. Computerized Japanese Testing Machine Azariye. Jehme Mile Thi Motorcycle G Car Kardegi Tamam Behtar. Fuel Adjustment RPMG Adjustment. Computerized Japani Machine Zariye Kai Vaniye Thi. Honda J Qualified Technician G Zere Nigrani. Irshad Autos Halani Road Mehrapur. Rabte Dilai 0320 180 0003.
3: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
4: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, and Rang Vagera Bazar Khan Bariya Dastyab Ahin.
3: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
4: Rabte Laye Proprietor Ghulam Nabi Mughal 0300-320-04372 and 0242-460100.
5: क्या देख रहे हो?
6: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
5: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज़ खा

जो इलाज कंदा आहिने एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-3385-569 0300-3385-69

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تاب اور یہ ہے انزلناه اتارا ہے ہم نے اس کو مبارکن بابرکت ہے مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی ولتنذر اور تاکہ تم ڈراؤ ام القرا بستیوں کے مرکز کو ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس ہیں والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالآخرتی آخرت پر یؤمنون بہی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں پر یحافظون حفاظت کرتے ہیں ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ او قالا یا کہے اوحی الی وحی کی گئی میری طرف وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی وَمَنْ قَالَ اور جو کہے

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड मशीन ज़रिए

0: हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल ट्रूप पर एतमाद, मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई
7: मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

ईरान ऐं अमरीका में सरचाउल ऐं पाकिस्तान जो टकराइण वारियूं कोशिशूं तेज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तेहरान में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची सां मुलाक़ात। ईरानी मीडिया मौजिब मुलाक़ात दौरान जंग जे ख़ात्मे वारनि तजवीज़नि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई वई। वेचोपर में अमुन जे क़याम ते बि ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ISPR मौजिब फील्ड मार्शल जो ईरान जो दौरो टकराइण वारनि कोशिशुनि जो हिसो आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर मसूद पठान, बाक़िर कालिबाद ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लगातार राबते में आयू। ईरान से जल्द मुआहदो तय थी वो। अमरीका के परदेही वजीर मार्को रूबियो स्वीडन में सहाफिन से गालाइंदे तेहरान से मुआहदो न थो तो प्लान बी भी मौजूद है। मुआहदो थो तो अपना हुरमज खुली वो। ईरान से डील असि पैं तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के टिन डी सरकारी दौरे से बीजिंग रवानो। वजीर आजम चीनी सदर वजीर आजम ए बिन से मुलाकात कलाकात दौरान पाक चीन लागापन समेत खिते सूरतहाल अमन के कयाम ला पाकिस्तान के सालसीवार कोशिश से ख्याल की डेवट कई वी। मीरपुर मातरोबर से समेजा बिरादरी के विंदुड़ में छेड़ो एक जुड़ो मारजी पो। गोट मोहम्मद आलम चांडियो में जमीन के मालिकता बिन्हीं धुरन में छेड़ो थो। लथियो सुरटा लगन से अकबर समय जो कतल थी पो। अठ जणा जख्मी थी पाया। मकसूल जो मड़ आज जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धुरन में छिपकाण वधी पई। खैबरबर से औरत जो रोड़ी केनाल में लाशत। गोट कुंभ वट गोठान औरत जो लाश रुणंदो रिसी पुलिस के इतला कयो। पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई ला अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस मुजिब लाश की सुणप ना थी सकी।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राबते जे लाए 03201800003। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब। रिश्ता भरोसे का।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
4: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
6: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 03385569

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल ट्यूब पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 शाम 5 ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 03016196851
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: ਅਮਰੀਕਾ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਲਸੀ ਗਿਆਬਾਰਡ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਫੈਬਰਵਰੀ 2025 ਮੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੌਰ ਮੁਕਰਰ ਥਿਅਲ ਤੁਲਸੀ ਗਿਆਬਾਰਡ 3 ਜੂਨ 2026 ਤੇ ਅਹੁਦੋ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਜਬ ਤੁਲਸੀ ਗਿਆਬਾਰਡ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਬਾਬਤ ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਖਾਂ ਅਲੱਗ ਮੌਕਫ ਰੱਖੰਦੀ ਹੋਈ। ਐਸਟੀਪੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕਾਦਰ ਮੰਗਸੀ ਸੈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾ ਮੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਸੀ ਮਾਜੇ ਮਲਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਛੱਡਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਦਰ ਮੰਗਸੀ ਕੇਟੀਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਂ ਗਾਲਾਈਂਦੇ ਚਓ ਤਾਂ ਸੈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਕਾਜ਼ਿਆਬੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਠਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਜੀ ਆਹੇ। ਸੈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੋ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦਿਲ ਜੋ ਬਾਈਪਾਸ ਥਿਓ ਆਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੋ ਆਹੇ। ਸੈਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕੇ ਕੁਝ ਡੀਆਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮਾਂ ਅਗਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਹੇ। ਖੈਰਪੁਰ ਵੇਝੋ ਕੋਠਾਣੇ ਜੋ ਗਲੋ ਕਪਿਲ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਲਾਅ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਲ ਕਯੋ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਮਕਤੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਫੁੱਲ ਫੋਟੋ ਨੇਵੀ ਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਹੇ। ਵਾਕੇ ਬਾਬਤ ਵਧੀਕ ਜਾਂਚ ਕਯੋ ਪਿਆ। ਮੀਰਪੁਰ ਮਾਥਿਲੋ ਪਰਸਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿੰਦਰ ਮੇ ਜੇੜੋ ਇੱਕ ਜਣੋ ਮਾਰਜੀ ਪਿਓ। ਗੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਚਾਂਡਿਓ ਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਬਿੰਦਰ ਮੇ ਜੇੜੋ ਥਿਓ। ਲੱਠੀ ਮੇ ਸਰੋਟਾ ਲੱਗਣ ਸਬ ਅਕਬਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਤਲ ਥੀ ਵਯੋ। 8 ਜਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਥੀ ਪਿਆ। ਦੁਰੰਡ ਮੇ ਛਿਕਾਣ ਵਧੀ ਪਈ। ऐं कैबर भरिसां औरत जो रोड़ी केनाल मां लाश अथव ॻोठण जी इतलाउ ते पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। सुञाणप न थी सघी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं जॻहि जा पावा ऐं पाइप 1.5-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज़ जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज़ जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-500-69।
5: अदा
6: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा
7: यार, अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है।
8: सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
6: मुजे दुकान जी बे डरंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: ईरान या अमरीका में चर्चा वाला है पाकिस्तान जो टैकरे वाले कोशिशों तेज. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तेहरान में ईरानी पर्दी वजीर अब्बास इराकची से मुलाकात. ईरानी मीडिया मौजूद मुलाकात दौरान जंग के खात्मे वाले तजवीजों से तफसीली गाल बोल कही गई. कतरी वफद पर तेहरान में मौजूद ISPR मौजूद फील्ड मार्शल जो ईरान जो दौरो टैकरे वाले कोशिशों जो हिस्सो है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर मसूद पश्चान बाबर बाकर कालीबाद अबियन से मुलाकात क
4: Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries, you know, have interests, because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all of this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir, and we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
3: Field Marshal Asim Munir sa lagatar rabte mein aaye hain. Umeed hai Iran sa jald muahida tay thi vendo. America ke pardehi wazir Marco Rubio Sweden mein saafin sa galhain ye chayo ta तेहरान से मुआदो न थो तो प्लान बी मौजूद है. मुआदो थो तो अब नहर बस खुली वो ईरान से डील असि पेरी तरजीह है. ईरान अमरीका के मुतालबन के अमुन गाल में सब का वही रंडक करार दई छो. ईरानी परे वजीर अब्बास इराकची गडल कौम सेक्रेटरी जनरल फोन से उन राबो किया. अब्बास इराकची तो अमरीका माजी में अधूरन वायदन ए फौजी हमलों जरिए सफारतकारी के नुकसान पहुंचाई रो है. तेहरान पाकिस्तान के सालसी में अमुन गार्डन में संजीदगी से हिस्सों वी रो है. इन गोत्रियत सफारती अमल जारी रखने जोर भर. वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के टिन डी के सरकारी दौरे से बीजिंग रवानो. वजीर आजम चीन सदर वजीर आजम ए बन मुलाकात कलाकात दौरान पाक चीन लागापन समेत खिते की सूरत हाल ए अमुन के क्याम लाइ पाकिस्तान के सालसी वाल कोशिशों से ख्याल की डे वी वी. अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड अहदे तक इस्तीफा दई छी. फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौर मुकर थियल तुलसी 30 जून 2026 से अहदो छी थी. अमरीकी मीडिया मूजिब तुलसी ईरान जंग बाबत ट्रंप इंतजामिया का अलग मौकफ रखंदी हुई. एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी सईद महमूद के अगवा में कराची वासी अमाद के मुलसान जो शक जाहिर कर छो. कादर मक्सी केटीएन न्यूज से गाले सईद महमूद की बाजियाबी ला कोशिशों वह बुनियादी जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की है. सईद महमूद जो ब महीना पैर दिल जो बायपास है. सन जिंदगी के खतरो है. सईद महमूद के कुछ ढी पे मुबैना तौर से बलोचिस्तान में अगवा किया वो है. खैरपुर वेझो गोठाने जो अंबन के बाग में गलो कपल लाश हथ इतला पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल किया. पुलिस मौजूद मकतूल मोहम्मद रमजान फुलपोटो नेवी में मुलाजिम है. वाक्य बाबत जांच करूं पा. मीरपुर माथिलो बरसा समय जहा बिरादरी के बिंतरण में झेड़ो एक चरों बारजी पो. गोठ मोहम्मद आलम चांडियो में जमीन के मालिकी तथा झेड़ो थो. लथियों सिरोटा लगन सब अकबर समय जो कतल थी पो. अठ जणा जख्मी थी पा. खैबर बरसा औरत जो रोड़ी किनार में लाश हथ सुणप न थी. तुलमी वडेरे के पुट तथा कतल थियल नौजवान जनाजेबाज बाद तदफीन मकतूल अजमल उर्फ नौमान मेमण जनाजेबाज गोट ओदी में अदा कई वही. वारसन मूजिब वडेरे के पुट नशे में नौजवान के पैंजे बंगले से घुराए कतल किया है. पुलिस वडेरे के पुट खिलाफ कार्रवाई करण लाए तैयार ना है. दोदापुर में विरोही बिरादरी मिलंदड़ खूनी तकरार जो जरगो डोही धुर से 90 लाख दंड मुकरण गोट बख्शण. द्रोही में अब्दुल मालिक द्रोही ए माणिक द्रोही के धुरन महलंदड़ तकरार जरगो थो. अब्दुल मालिक धुर मत एक खून एक जख्मी के जख्मी करण जो दो साबित थे. 90 लाख दंड मुकरण किया वो. بس سال اگ زمینی تکرار تاں جھیڑے میں پریل بروہی قتل تھی پے ہو ایک جڑو زخمی تھیو نیو سدا باد میں بس سال اگ قتل تھل نوجوان بادشاہ اپڑے جو قتل جو جرگو تھیو دو ثابتن تے جواب دار درمتاں 96 لکھ ڈنڈ مقرر محمد خان جڑے جو سرپنچی میں گوٹ شانواز جڑے جو میں جرگو تھیو نوجوان جے قتل جو دوس ٹن جڑن تے ثابت تھیو جواب دار یاسر کاکا مشتاق کاکا سینٹرل جیل حیدرآباد میں قید آہے ایک جوابدار دانش ملک روپو شاہ جوابدار دھر ٹن مہینن اندر دھر جے ڈنڈ جی رقم ادا کندی جے بعد مقتول جا وارث راضی نام جمع کرائیندا لاڑکانے میں فٹر جو سڑ تے آئی بی ٹیسٹ پاس استادن جو مطالبن جی منتا لائے احتجاج پگارن جی بندش بین مطالبن جی منتا لائے پریس کلب اگیاں بک ہڑتال بھی کئی وئی اگوانن چو تے گزرل 15 مہینن کا استادن جو پگاروں جاری نہ ہن کئی ویوں عید اچن واری آہے پگار جاری کئی ونے دڑوں میں پانی کی کھوٹ شاخن کی کھاٹیاں تھن خلاف آبادگر جو مظاہرہ بچاری کنڈال میں نکل راجواہ میں پانی کی کھوٹ کھاٹیاں تھن خلاف آبادگر نے احتجاج کیا آبادگر پانی نہ ملن کرے فصل تباہ تھی رہا ہے پانی فراہم کرے پریشانی ختم کی ونے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
6: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

क्या करेंगे, खूबसूरत हो जाएंगे और बहुत ज्यादा वाली खूबसूरतियाँ हासिल करते जाएंगे। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसे फर्क है जो कि आप लोगों को मैं बताऊंगी इस पूरे प्रोग्राम में, और आपने क्यों इस्तेमाल करना है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए प्रोग्राम में, प्रोग्राम को सुनते रहिए, एंजॉय करने के साथ साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें मिल रही है मालूम जो कि आप जानना चाहते हैं। बिल्कुल सुना प्रोग्राम में यहाँ पर बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे लेकिन साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रवेश एंड टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस प्यारे प्यारे प्रोग्राम में। आप प्यारे प्यारे लिसनर्स को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है और इसी के साथ साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स हालत है कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनल यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि हमारे पास 2 घंटे होने वाले हैं मेरी जान। तो इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करने वाले हैं। तो 2 घंटों में आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, प्रोग्राम में मैसेजेस होंगे, प्रोग्राम में आप लोगों के कॉमेंट्स होंगे, प्रोग्राम में आप लोगों के कॉल्स ली जाती है और बहुत कुछ होता है जिससे आप लोग हमारे साथ साथ कनेक्ट रह सके। ओके जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्राली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगाज से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगाज से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो हम ऐसा करते हैं कि ये कलाम लगा लेते हैं जी प्रोग्राम में और कलाम के बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

0: आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी प्रोग्राम है और प्रोग्राम में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स में आप लोगों के व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइए जल्दी से कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का इरादा है आप लोगों का और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे मार्केट तो हम पक्का लेकर आएंगे। और ये भी हमें बताइएगा साथ साथ जो है ना ईद भाई बिल्कुल करीब आ चुकी है तो ईद की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल खवातीन जो है वो सफाइयां करने में बड़ा मसरूफ है आजकल। देखा जाए तो लोगों के घरों में बकरी आना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोगों के घरों में बकरी काफी टाइम पहले आ चुके थे लेकिन कुछ लोगों के घरों में अभी आना जो है ना वो स्टार्ट हो चुके क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई हमसे काम नहीं हुआ जाता और बकरी जो है वो उनकी सफाइयां होती हैं उनका बड़ा काम होता है तो बकरी जो है ना वो थोड़ा वो ईद के कुछ दिन ही बचते हैं तब जाकर वो लेकर आते हैं बकरा की शॉपिंग करके आते हैं। ये भी जेंजीज की बोलिया। ओके सो अज जे को माइनस सभी चीजों के ॾिसी करे टॉपिक सोचो आहे सो टॉपिक अज मां आवांगा इहो पुछंदमि त जैसे जैसे भई ईद जा ॾींहं करीब ईंदा आहिनि ऐं घरनि में जेको आहे न कमु वधी वेंदो आहे सफ़ायूं हूंदियूं आहिनि या वरी अगरि बकरा तव्हांजे घर में अची चुका आहिनि त बकरनि जो बि इलाही सारो कमु वधी वेंदो आहे त तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधाईंदा त तव्हांजे घरनि में जेके कमु वधी वेंदा आहिनि ख़ासि करे ईदनि जे मौक़नि ते ऐं हिन वार ईद जो कमु त मूंखे लॻंदो आहे कुझु ज़्यादा हूंदो आहे सवायो हूंदो आहे ईअं हूंदो आहे न तो मूंखे तव्हां इहो ॿुधाईंदा त कम खां बचण जे लाइ तव्हां कहिड़ो घर में बहानो कंदा आहियो जेको तव्हांखे लॻे त बाबा हीउ बहानो करे मां बची वेंदा पंहिंजे घर वारनि खां हिकु त गर्मी बि ॾाढी आहे इहा बि ॻाल्हि तव्हां पंहिंजे ज़हन में रखो गर्मी जे बावजूद बि अगरि तव्हांजा घर वारा तव्हांखां इलाही सारो कमु कराईंदा आहिनि त पोइ तव्हां घर वारनि खां बचण जे लाइ कहिड़ा बहाना ठाहींदा आहियो इहो तव्हां अॼु मूंखे ॿुधाइण वारा आहियो। उन सां गॾो गॾु अगरि तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियणु चाहियो था त पोइ तव्हां छा कंदा बाबा अपना सेल्फ उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए एल आर के सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक पर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जी उसको आपने फॉलो कर लेना है और पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की जो ना वो लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए ताकि लोगों को पता चले कि भाई जान हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें आप लोगों को व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप लोग करने वाले हैं। और जबकि देखा जाए तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमारे पास भी ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिनका इस्तेमाल करें बस इस्तेमाल करने के बाद हमें खूबसूरत जो है ना वो रिजल्ट मिलता जाए तो ये मिल जाएगा जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595 ये नंबर डायल कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाए वहां से जाकर इजीली आप परचेज करते रहिए क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है व्हाइट एज का फेस वॉश है जो कि विटामिन सी से तैयारशुदा है उसके बाद व्हाइट एज का ना जो साबुन है वो भी है और उसके अलावा व्हाइट एज की लवली क्रीम है। व्हाइट एज की लवली क्रीम तो भाई आप लोगों के लिए ऐसा समझे कि गेम चेंजर वाला काम करेगी आपकी स्किन के ऊपर। अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते मेकअप से दूर भागते हैं या फिर गर्मियों में आपसे मेकअप होता नहीं तो व्हाइट एज की लवली क्रीम बस आप परचेज कर लें अपने पास रख लें ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट होने वाला है। और उसके अलावा अगर गर्मियों का सीजन आ जाता है और आपके चेहरे पर एक्नी भी आ जाते हैं तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब है जो कि एक्नी क्लियर वाला ट्यूब है डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप परचेज करते तो आपको इजीली मिल जाता है। ये भी ट्यूब आपके चेहरे की एक्नी को खत्म करने के लिए बनाया गया है व्हाइट एज वालों का ही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे जनाब पूरे पूरे प्रोग्राम में। आप मुझे जरा आज ये बताने वाले हैं कि काम के ऐसा है ना कि काम आजकल मुझे लग रहा है ऐसा या तो फिर हमारे घर में बहुत ज्यादा काम है तो मुझे लग रहा है कि जैसे करीब आ रही है तो काम बढ़ता जा रहा है तो मुझे बताएं कि काम से बचने के लिए आजकल आप अपने घर वालों से कौन सा बहाना बना रहे हैं कि आप अपने काम से जो है ना वो बच भी रहे हैं और चवंदा है ना नांग भी मरे लठ भी बचे वो वारो सीना मुखे बतायो। और ये आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोग्राम में वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कभी दिलबर कभी दुश्मन कभी दिलदार हो जाना कहां से तुमने सीखा है बड़ा बेजार हो जाना कभी मिलकर रकीबों से हमारे हाल पे हंसना कभी मेरी मोहब्बत में गुलो गुलजार हो जाना वाह वाह वाह वाह। कहते सॉन्ग बिल्कुल जी ये वाला गाना आपको सुनाएंगे जरा ये कॉमेंट आप दोबारा से मुझे शेयर कीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कॉमेंट ऊपर चला जाएगा। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है कैसे हिदायतुल्लाह ठीक ठाक इमरान खान रुख हमें सुन रहे हैं वेलकम जी। और किशोर भाई कहते हैं वालेकुम असलाम अदा परेशान थियण असांजे परेशान थियण असांजा दुश्मन असां त परेशान करण वारा आहियूं थियण वारा न इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे वैसे करण वारा बि न बणिजो बसि ख़ुशि ख़ुशि रहो ऐं माण्हुनि खे बि ख़ुशि ख़ुशि रखो अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरन से आप हमारे साथ हैं जी वेलकम करते हैं और जीशान अली राहू जा हमारे साथ मौजूद हैं जीशान भाई आपको भी वेलकम हो किशोर भाई कहते हैं सॉरी अदी कल नहीं आया क्योंकि सारा दिन कपड़े धोए फिर इस्त्री की फिर कहा इस्त्री कल लाना इस्त्री तो वैसे कल ही आएगी और उसके साथ साथ जो है ना मैं ये खुद ही सोच रही थी मुझे लग रहा था कि कल मैं नहीं आई थी प्रोग्राम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो है ना वो छुट्टी की थी ऐसा फील हुआ मुझे लग रहा था कि मैं बहुत दिनों से प्रोग्राम करने नहीं आई लेकिन नहीं भाई सिर्फ मैं कल का दिन ही नहीं आई थी और उसके अलावा जो बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ करनी है बस आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा प्रोग्राम सुनते रहिए और खूबसूरती के राज जो है ना वो जानते रहिए क्योंकि यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है खूबसूरती के राजों को जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो बस बने रहिए हमारे साथ मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: Beauty ko banao perfect beauty. Best look beauty cream ke saath. Jo de aapko khoobsurti ka
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8051
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 खां राति 8 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385 569 0300-33-8556
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

ना, तो थोड़ी देर ना आप लगाइए, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भाई आपके पास व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश है, और विटामिन सी का ये फेस वॉश है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है और एंटी एजिंग के लिए भी है। तो व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके चेहरे पर जितने मसाले वो सारे दूर हो जाएंगे। और साथ साथ अगर आप फेस वॉश नहीं लगाते, साबुन लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी टेंशन की कोई बात नहीं है, व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है। और व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है, फ्रेश बनाता है, फेयर बनाता है, आपके चेहरे की स्किन को जो ना निखारने के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी से तैयार शुदा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ साथ जो लोग एक्नी की वजह से काफी ज्यादा वाला परेशान है, एक्नी को भगाना चाहते हैं, एक्नी को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम है। दरअसल ये एक ट्यूब है, और ये ट्यूब आप जब परचेज करते हैं तो आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल जाता है, जब आप नाम लेकर तलब करते हैं। तो डॉक्टर पिंपल का ये एंटी एक्नी का ट्यूब आप परचेज कीजिएगा, जो कि आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार शुदा है। उसके अलावा ये आपके चेहरे की एक्नी से लड़ाई करता है, फाइट करता है। आपके चेहरे पर अगर जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्नी आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपके चेहरे पर खत्म होती है वो ये होती है कि भाई आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद आपके चेहरे की स्किन क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है, आपके चेहरे पर अगर एक्नी हो तो वो भी खत्म हो जाते हैं, एक्नी के निशान हो वो भी खत्म हो जाते हैं, और आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत होने लग जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके चेहरे पर एक्नी आ जाते हैं, और एक्नी की वजह से आपकी रंगत अगर गोरी भी होती है तब भी आपकी स्किन जो है ना वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही होती है। तो एक्नी को खत्म करने के लिए, एक्नी को कंट्रोल में लाने के लिए आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है। आपके चेहरे के एक्नीज हो, एक्नी मार्क्स हो, किसी भी तरह का एक्नी हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। ब्लैक पॉट्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल आपके चेहरे पर जमा हो जाती है वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। आपके चेहरे की स्किन चमकना, दमकना और खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल भी आसान होते हैं, जैसे आप रात के टाइम कोई भी ब्यूटी क्रीम लगाते हैं, तो अगर आप डॉक्टर पिंपल का ट्यूब लगाना चाहते हैं तो रात के टाइम आप इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ी बेस्ट टाइमिंग होती है रात की। अगर आप अपना फेस वॉश क्लीन करते हैं, अच्छे से अपना फेस वॉश करते हैं, हाथों को भी अच्छे से क्लीन कीजिएगा, हाथ भी आपके क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जब आप हाथों से ही अपने चेहरे पर लगाते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, तो आपके हाथ भी क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हाथों पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, अगर वो आपके फेस पर आ जाते हैं, अगर आपके स्किन पर एक्नी होते हैं तब मसले बनाए स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने हाथों को भी अच्छे से क्लीन रखा करें, अपने फेस को भी क्लीन रखा करें, उसके बाद डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब आप अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। जहां पर एक्नी हो वहां वहां पर लगाइए, या फिर जहां पर आपके निशानात हो वहां पर लगाइए। कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कितने सारे ऐसे निशानात, कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आप अगर अपने चेहरे पर लिए फिर रहे हैं, तो आपने डॉक्टर पिंपल का ट्यूब तो लाजमन लगाना है। ये सर्दियों में तो वैसे ऐसा होता है कि लोगों के चेहरे पर एक्नी कम ही आते, लेकिन गर्मियां जैसे आ जाती तो एक्नी भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ना अंब खाने से भी एक्नी निकलता है, सिंधियुनि जो लॉजिक आए बिल्कुल ये थी सके। तो पर तुम एक्नी अगर नथा चाहियो पाने चेहरे ते, तो तुम डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब इस्तेमाल करो, तुम्हारे चेहरे चाहे एक्नी खत्म थी ना, पर तुम इजीली हर शे खाए भी सको था, आई तुम पांजी स्किन के खूबसूरत थींदे भी दिसी सको था। सो बिल्कुल तुम इस्तेमाल कंदा हलो, आई अगर तुम पांजी स्किन ते मेकअप नथा यूज करे सको छो, तो गर्मी डाडी आ है, तो तुम व्हाइट एज जो लवली जी का क्रीम है ना, व्हाइट एज जी लवली क्रीम रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन सा तैयार थियल आ है जनाब। में ट्री ऑफ विटामिन जा कैप्सूल मौजूद आ है, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, खोड़ सारा वाइटमिन्स जी के तवां जी स्किन जी अंदर तवां जी स्किन के जरूरत होंदी आ वाइटमिन्स जी, वे सब पूरा कंदा उन सां गॾु गॾु सनस्क्रीन भी एड थियल अथसि। तो व्हाइट एज जी लवली क्रीम तवां लाज़मी ट्राई कजो, ही तवां जी स्किन जे लाइ आहे। तवां सुबुह जो बि इस्तेमालु करे सघो था, राति जो बि लॻाए सघो था, कोई बि एज लिमिट नाहे, तवां हर एज में लॻाए सघो था। बसि पंहिंजी स्किन खे वॉश कयो, उन खां पोइ अच्छे तरीक़े सां पंहिंजो चेहरो सुकायो, उन खां पोइ व्हाइट एज लवली क्रीम जो थोरो मक़दारु खणी पंहिंजे चेहरे ते लॻाए छॾियो। तव्हांजी स्किन जेको आहे न ग्लो बि अची वेंदसि, ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे न सफ़ा ख़ूबसूरत लॻंदी, तव्हां कोई मेकअप कयो आहे। सो जेके माण्हू ये चाहिनि था त बाबा असां हेॾी गर्मी में मेकअप नथा करणु चाहियूं, शादियूं आहिनि या फिर ईद आहे मथां, त न सभिनी जे लाइ व्हाइट एज जी लवली क्रीम त सफ़ा बेस्ट अथव, लाज़मी लॻायो, सभु लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो, मर्द मायूं सभी हणो, सही आहे। उन सां गॾोगॾु तव्हां बिल्कुलु अगरि पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइणु चाहियो था, त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595, 03-15-799-0595, ही नंबर आहे जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। किथे मिलंदा प्रोडक्ट ऐं किथे नथा मिलनि ॿुधायो त मूंखे ख़बर त पवे।

जमा प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावों से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है बिल्कुल जी आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं और क्या कह रही हैं ये भी देखते हैं। क्या यार पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम बेटा सिद्धू हाउ आर यू हो फाइन बेटा सिद्रा मुस्कान जी मैं सफा भली तामदा किया हालार हमारे साथ मौजूद है। हालार भाई वालेकुम अस्सलाम और एसन अली अरबानी वालेकुम अस्सलाम कहते ओ माय फेवरेट आरजे केसी आप वेलकम दिल से व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में आपको भी वेलकम खुशामदीद। उदास लड़की कहती हेलो ओपा ब्यूटीफुल शो ब्यूटीफुल मी एंड सो ब्यूटीफुल यू आशिक अली जरबानी हमारे साथ मौजूद है। हेलो हिदायतुल्लाह कहते टॉपिक वैसे घर वालों से बहाने चलते तो नहीं लेकिन मैं तो कह देता हूँ मेरे चप्पल में अच्छा मेरी चेल में सूर्य अच्छा वो लगा चप्पल में पता नहीं क्या होगा चले वैसे अच्छा बहाना है चेल में सूर्य अच्छा निदा कहती है ये टॉपिक मैं तो काम करती नहीं जवाब क्या दूं अब ये भी ना हो तो आने कोई ना कौन तो कोई काम तो जरूर दवा करना होगा। अब्दुल रजाक जरदारी भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम। आदिल कहते हैं ये सॉन्ग हाँ जी बिल्कुल आपका गाना लगा देंगे थोड़ा सा सब्र कीजिए।

भाऊ के जी चाचा खालिद कहते हैं कि कम कोन्हे, कम लाइ ॿिया माण्हू आहिनि, मेड आहे रखियल, सॼो कम व्हाट्सअप ते, योर टॉपिक आंसर। ओके ओके चाचा, मतलब तव्हांजे तरक़ी अची वई आहे। प्रेम चंद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और ये महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच। महर इरफान सियाल साहब वेलकम कहा जाता है। और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक यदि मुख्य बहानो करण की जरूरत न पवंदी आहे, अगर मना करे छॾी त करे छॾी। अल्लाह जो बोल दिया सो बोल दिया, ये सफा। अरे सुमाटो गोपांग हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे थे, उस दिन आपने बोला मुझे याद दिलाना सॉन्ग। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया। सो आप अपना गाना एंजॉय कीजिए। और उसके अलावा हैं जी जहीर अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते ओ माय फेवरेट आरजी, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? दर्दे दिल आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम स्वीनी। किशोर भाई बिल्कुल ऐसी बात है, यह गाल तवा के जहन में छूना आई हुई।

अच्छा नूर हसन दुनिया भाई हमारे साथ हैं फ्रॉम समंदर पार. अच्छा अच्छा चलो यानी तुम असा के बुधो पयास मोहब्बतन पहले भाज और ये हैं जी किशोर भाई के तौबा तक जे न तो एतरो याद रखी तो या लिखी रखनो याद हुंदो है याद या वरी मुझे कड़ी आदत होनी मां दिसी जका छ मतलब पढ़नी है ना वो और मुका पढ़ी ना में याद बाबा यो सानो ज़हन तब. और निदरी कहती एक दिन उसने मुझसे कहा क्यूट बन के दिखाओ फिर मैंने उसके

अच्छा मां अञा ताईं वेठी सोचां थी न खिलणो हो हिन ते छो त ॻाल्हि थोरी सम्झ में न आई भाई अगर ऐसा कोई सवाल आपसे करे तो आप उन्हें सीधा सीधा बोल दीजिएगा कि आप जो है ना व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स लगाइए भाई। बात इतनी सी है कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं जिसमें आप लोगों के लिए व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम मौजूद है, व्हाइट एज का फेस वॉश है, सोप है, व्हाइट एज की लवली क्रीम है, बाबा वाह वाह, आई डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब भी आए जो फुल डॉक्टर की तस्दीक से तैयार थियल है, यानी कोई भी चीज इन में एड थियल ना है जो तुम सोचो तो बाबा लगायो या न लगायो, बिल्कुल तुम लगाए सको था, टेंशन की गाल ही कोने का।

अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हाथ साफ कैसे होंगे, हाथों में तो व्हाइटिश लवली क्रीम होगी ना, तो तमाम पेरेंट्स चंगे तरीके से पांजो फेस वॉश करे पो खन जो ना व्हाइटिश जी लवली क्रीम लगाने से लाइक वैसे मावरी थोड़ी है मतलब मां सोचिन हाथ धोने का कोई भी मुखे लगता तो मुझे हाथ साफ ना दे तो फाई जी मामले में थोड़ी साइको है यार लगंदो आ दरवाजो जो बंद कयो ना तो खराब थी यार सच्चाई दिखारी अगर वाकई मां घड़ी घड़ी होता तो वहां तो मुझे लगे तो मुझे सारी जिंदगी सिर्फ हथ धोने में गुजरी वेंदी।

अच्छा अच्छा, ये जानी जहांगीर भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं आपको। हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है वाकई। दर्द दिल कहती हैं, टॉपिक चंदा, अगर मुझे कोई काम बोल दे तो मैं कहती हूँ रुको मैं आती हूँ, फिर तुम शायद गायब हो जाती होगी। अच्छी बात है वैसे। अच्छा फरमाइशों, अज मुखे थोड़ी नजर आयो अन्या लगे तो तभी रस्ते में आयन, शायद जल्दी जल्दी फरमाइश कर अगत कम तुम खराब थे फरमाइश न ली सकते। अच्छा हजार भाई भी आ चुके हैं। हजार भाई वालेकुम अस्सलाम, खुश आयो। अच्छा पोस्ट के लाइक एंड शेयर के नालो बिल्कुल बिल्कुल सफाई है, सोना सोना थी मेरा जड़ी तांगे खबर पंदे। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो तवा जे खूबसूरती जला केडो ज्यादा जरूरी है, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो तवा इस्तेमाल कयो आई डायल कयो 03-15-799-0595। उन का अलावा असा सगड मौजूद आए फजीला, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं। हाँ जी, आपको भी वेलकम मेरी प्यारी जान, और आपको भी खुश आमदीद। आपने अपनी अम्मी जान और कायनात और सभी लड़कियों को सलाम दिया है। टॉपिक कहती अम्मी की छोटी सी जान, ससुराल की बड़ी बहू है, नो बहाना। हाँ जी, ये वैसे सही बात है, अगर आप मायके में आगे बरसाइयां चल रही होती है, ससुराल में आपको पता चलता है घड़े भी ऐसा हुआ। और उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। पूरे पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
2: खत्म आईडी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर निया जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

ओके जनाब, आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नई फिल्म. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी जनाब, सो व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं. और इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं. तो दूसरे घंटे में आप लोगों को वेलकम किया जाता है. उसके साथ साथ आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बताया जाएगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल जी जानना चाहते हैं, क्यों नहीं जानना चाहते. अगर आप नहीं जानना चाहते तो डी भी जोर आगे बुधाईनासी जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा केतरा फायदा आहिनि ऐं उहे माण्हू मतिलबु बदनसीब आहिनि जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल न कंदा. छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां पोइ तव्हांजी स्किन जेका आहे न उहा ख़ूबसूरत थींदी वेंदी, प्यारी प्यारी थी वेंदी, सॉफ्ट थींदी, ग्लोइंग थींदी. ईअं लॻंदो तव्हांखे नेचुरल बाबा असांजी स्किन में जेको आहे न हाणे ख़ूबसूरती अचणु शुरू थी वई आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां बिल्कुलु ॼाणींदा आहियो त वाइटमिन ई बीट सां तयारु थियल आहे. उन खां अलावा माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन बि अथसि जनाब. सिर्फ़ु तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी 2 रातियुनि जे इस्तेमाल सां. अगरि तव्हां 2 रातियूं इस्तेमालु कंदा आहियो, अगरि तव्हां लॻायो था फेस वॉश करे प्रॉपर तरीक़े सां, त तव्हांखे बिल्कुलु 2 रातियुनि जे अंदरि रिज़ल्ट ॾियण वारो प्रोडक्ट आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिल्द की खूबसूरती जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ती है. आपकी खूबसूरती की हिफाजत होने लग जाती है और एक मयारी ब्यूटी क्रीम ऐसा लगता है कि आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे हमें कैसे मिलने वाले हैं. तो फायदे तो खैर आपको मिलेंगे लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके चेहरे पर नुकसान बहुत ज्यादा छोड़ कर जाते हैं. तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें जो कि आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार शुदा हो, आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, आप लोगों को हमेशा के लिए पाला पाला बना दे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस साबित होगी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा जो है नरम मुलायम और तरोताजा हो जाता है. और उसके अलावा आपकी स्किन में जो है ना वो खूबसूरती आना स्टार्ट हो जाती है. और इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपकी जिंदगी जो बेरोनकी है ना वो भी कम हो जाती है. चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश दिखाई देता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खुसूसी अज्जा जो जिल्द को फ्रेश एहसास देते हैं और खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं. तो रोजाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है वो कुदरती खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है. आपके चेहरे पर अगर निशानात हो, एक्ने हो, डार्क सर्कल्स हो, बहुत सारे ऐसे मसले जो कि आप चाहते हैं कि ये खत्म होने चाहिए, बिल्कुल जी खत्म हो जाएंगे. आप इस्तेमाल तो कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और साथ में आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन फेस वॉश जो कि आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल सकता है. और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार शुदा है जो कि आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को जो है ना वो क्लीन करता है और आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है. डी स्किन का फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करते हैं ताकि स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है, बटर की तरह स्मूथ हो जाती है, तो स्मूथ लाइक बटर हो जाएगा सीन. और इसके अलावा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ जब आप दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे, रात के टाइम फेस वॉश कीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, 2 रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरतियां हासिल करते जाइए और डायल करते जाइए 03-15-799-0595. इहा बि ॻाल्हि ख़बर पई आहे त तव्हां नंबर ते राबितो घटि कयो पिया, इन लाइ तव्हां घटि कयो पिया. तव्हां घटि छो था कयो बाबा? घटि अगरि तव्हां राबितो कंदा त अॻिलनि माण्हुनि खे कीअं ख़बर पवंदी त किथे किथे अञा ताईं प्रोडक्ट अवेलेबल न आहे थियो. सो तव्हां सीरियस थियो ऐं नंबर खे डायल कयो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं ॿुधायो जनाब त किथे किथे नथो मिले प्रोडक्ट ताकी असां अवेलेबल कराए सघूं. असांजे लाइ बि आसानी थी वञे, तव्हांजे लाइ बि आसानी थी वञे. तव्हां इस्तेमालु कयो ही सभु प्रोडक्ट जेके तव्हांजे आसानी जे लाइ, तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ तव्हांखे ॿुधाया वञनि पिया.

अगरी डाडो भलो गानो तवा बुधो पयो ना सगडो गड जी जी हाने लगो वाके तारीफ पयो करे अच्छा ये गानो के डेडिकेट आ बुधाय तो सही लुबना हमारे साथ मौजूद है कहती है अस्सलाम वालेकुम शुरू जाने के हाले में भी आपके साथ साथ हूँ तमाम बेहतरीन शो चल रहा है आपका सलाम टू माय फ्रेंड निदली एंड क्यूट गर्ल्स ओके ओके जी हमारी प्यारी लुबी को हम वेलकम करते हैं

0: ओके जी, सो तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट लॻायो पिया या डी स्किन जा प्रोडक्ट लॻायो पिया, मूंखे ॿुधाईंदा हलो। हुन सां गॾु अगरि तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइण जे बारे में सोचो था, तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो। जे ख़बर पए बाबा मीरपुर ख़ासि से अब्दुला महरी कंहिं ते अस्सलाम वालेकुम भाजी, वाइट एज ब्यूटी क्रीम ज़बरदस्त हे, वाह साईं वाह, तव्हां इस्तेमालु कयो पिया, महिरबानियूं ऐं मोहबतूं प्यारे भाजू। एॾम कंहिं ते हीअं मां घोड़ थी आहियां, मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, प्लीज़ प्ले ममताज़ मोलाई, हाज़िर हाज़िर हलायूं था ममताज़ मोलाई। मक़सूद मना कंहिं ते मेहरापुर से, हेलो जी सिद्रा मुस्कान जी, में ऐसा लगता है कि मैं क्रीम लगाऊंगा तो मैं गोरा तो हो जाऊंगा ना, थोड़ा बुधा
1: तो
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त बेशक तव्हां गोरा थी वेंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बिल्कुल मेहरापुर मां पुछा करायो, मिले थी त वठी अचो, सही
1: आहे।
0: उन खां अलावा ये मौजूद है, हाय आर जे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, सुनो दुनिया वालो दिल बड़ा करके सुनो, जब जिंदगी में खुश रहना है तो मुनाफिकों से बचते रहना, बचते रहना बाबा, बचते रहना रे बाबा, हाजिर हाजिर। और वफा अब्दुल गफार खास के लिए हमारे साथ है, एंड नईम अहमद खास के लिए, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं, मुझे सॉन्ग सुनाए शायद अली बबर का कोई भी, हाजिर हाजिर। शायद बबर जो गाना लिस्ट पे मौजूद है तो वहाँ लाजमी बुदना। और मकसूद मला कहते हैं मेहरापुर से, आज ये प्रोडक्ट लेने जाऊंगा और अगर मेरे घर वालों को ये प्रोडक्ट अच्छे ना लगे तो मेरी पिटाई पक्की है। नहीं नहीं, उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे, वो आपकी तारीफ करेंगे, बस तव्हां वठी वञो त सही घर, पोइ तव्हां मूंखे दुआ ॾींदा। और ये है जी सिद्रा सकलीन अब्बास हमारे साथ हैं, कैसी हैं आप, उम्मीद है कि अच्छी होंगी। जी जी सफा अच्छी थी पई है। और कहते अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे न, माण्हू कुझु मूं ॿुधा आहिनि त जेके चवंदा आहिनि असांजो सियारे में जेको न रंग सही थी वेंदो आहे, सियारे में असां गोरा थींदा चिटा थींदा, पर मुंहिंजो रुबतो अथव, मां गर्मियुनि में चिटी थी वेंदी आहियां। या त इहे कमाल आहे बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो या त वाइट एश लवली क्रीम जो कमाल हूंदव, पोइ तव्हां बि लॻायो, तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो।

ओगरी कश्यप भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिड्डो जानी, क्या हाल है, गुड आफ्टरनून, वेलकम दिल से, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारी। और ये अनीता हमारे साथ है और सकलीन अब्बासी भी हमारे साथ है, या फिर सकलीन अब्बास ने खाली ओके जी, और आपको वेलकम कहते हैं। बाकी आपका मैसेज मुझे समझ नहीं आया। और कश्यप कहते हैं सिड्डो एडवांस ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से, और सॉन्ग सुनाना ईद मुबारक यू ईद ते बुदना सिंह बाबा, और उनका अलावा एडवांस वाली तो ईद मुबारक खड़ी चली। बाकी गाना आई थे गाल सिद्धी वोट मोहम्मद अयब थे हबीबुला थे कहते शो वेरी नाइस आहे सलाम तवा के वालेकुम असलाम भाम कहते दिल बेट आपी हाँ जी चले ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा खाले जुने जो तवा जो मोहब्बत प्रोग्राम उदो पे पैनल ते मैसेज क्यों था। और मकसूद मल्हा कहते हैं खुश रहे और शायद आगे आपका मैसेज थोड़ा मिसिंग पार्ट हो चुका है, आप जो सोच रहे ना वो सोच आपकी मुझ तक पहुंच ना सकी है, तो बताइए जरा क्या आप सोच रहे हैं। और फहद डेरी है सऊद डेरी फ्रॉम नवाबशाह सलाम अदी शो तवा जो नाइस आए वालेकुम अस्सलाम भा मोहब्बत अदी लबड़ो है कहते बाजी चलें भाई मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना सुनेंगे ठीक है। और युसरा आज हमारे साथ है, युसरा ने दो लव्स और ऐड कर ली अपने मैसेज में, लिखा है युसरा अली हाय, युसरा अली हेलो कैसी है ठीक है। और हेजी गोट मीर शेर खान टालपुर से अलाडिनो खान टालपुर, और आपका शो वेरी वेरी नाइस है सलाम आपको जी वालेकुम अस्सलाम। गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खान कुर्बान अली खास के लिए है बाजी, झंडो मरी में क्रीम मिल रही है और फैमिली इस्तेमाल करे पर रिजल्ट वीआईपी मिलो आए वाह साई वाह ई असली बुधाईंदा कयो। और मोहब्बत हूँ प्यारे भाजू। और हैं जी इरम कहते से जानी जवाब है, शादी से पहले मैं बहुत बड़े बड़े बहाने बनाती थी नखरे करती थी, अब शादी के बाद मेरी सारे बहाने नखरे खत्म हो गए चले ये भी अच्छी बात है। और प्रिंस अहमद अली रिंद है फ्रॉम अहमद अब्बास से, अच्छा भाई आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारा शो सुन रहे हैं।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8556-9।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

अजनबी जरा सोच लो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप लोगों के समाधों के नजर वाकई ये जो गाने हैं ना, ये टांगों की दौड़ वाले गाने हैं, तो जब आप ये वाले गाने सुनते हैं तो जाहिर सी बात है हमें टांगे याद आएंगे। और बहुत ही प्यारा ये म्यूजिक कलेक्शन है, मुझे आप बोल दिया करें मैं आपको ओल्डी गोल्डी गाने भी सुना दिया करूंगी। वैसे आप सोचेंगे सिद्रा के प्रोग्राम में ये वाले गाने मतलब ऐसा के जैसे कोई मुख्तलिफ सी बात आप लोगों को लगती है, लेकिन हाँ मैं चलाती हूँ मुझे पसंद है ऐसे गाने, लेकिन अलग बात है कि आपके पसंद के गानों की आड़ी चल जाते ये वाले गाने और मैं चला नहीं पाती हूँ। वेल प्रोग्राम का लास्ट लिंक आ चुका है, मैंने यार सोचा कि जरा आप लोगों को ऐसे वाले गाने

मैंने वही सोचा कि मैं जरा अपनी बात को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। और यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हमारा और आप ये नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03 1579 0595। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स से तैयार शुदा है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन के साथ साथ आप इस्तेमाल कीजिए, दो रातों में आपको मिलेगा परफेक्ट वाला हुसन।

वैसे सही बात है, कहने से बेहतर है कि इंसान खामोश ही रहे। ओके जी, आपके मैसेजेस हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि भाई हमारी जानिब आएं, और अनवर भाई हमें सुन रहे हैं बहुत मोहब्बतों के साथ, हमारा शो पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आपको वेलकम है। और एसन कहते हैं कि टॉपिक बहानों नायो कदा कम करे जान चढ़ाइंदा आयो। चले ये भी अच्छी बात है। नूरसिंह तुनिया भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना दूर से हमारा शो सुन रहे हैं। चाचा खालिद कहते ईद खां पोए नंबर ते राबतो कंदासीं, फिलहाल ईद खां पोए नंबर ते राबतो कंदा आहियूं, छो नंबर ते राबतो हाणे कयो, प्रोडक्ट भी हाणे वठो। इन चवंदी मां ईद खां पोए न, बाबा हाणे वठो हाणे। और ये मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल आहिनि, अवां जा खुश आयो अदी, अवां जो प्रोग्राम वॾे शौक सां ॿुधूं पिया अदी, अलाए शो अवां जो चैनल मुंहिंजे एफ एम रेडियो ते हले न पियो, मां ॾाढो कोशिश कयां पियो सकरेन एफ एम तां शो ॿुधंदो आहियां अदी। अच्छा भाउ, बिल्कुल तव्हां कोशिश कयो, तव्हांजी एफ एम ते बि हली वेंदो असांजो चैनल, उन खां अलावा अगरि नथो हले त तव्हां थोरो असांखे सोशल मीडिया ते ॿुधी सघो था, फेसबुक आहे असांजो, गूगल ते ॿुधी सघो था, बहुत सारा तरीक़ेकार आहिनि असांखे ॿुधण जे लाइ, बसि दिलि वॾी कयो। और ये भाई हमारे साथ हैं, नाम है आपका सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अलीगुल जमाली, विलेज रईस, मोहम्मद हसन जमाली, शफियाबाद नवाबशाह से हैं जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते सब भाइयों को।

अरे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा गाना हमने सुना. कभी मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसा पूरा प्रोग्राम करूँ जिसमें ये सारे ओल्डी गोल्डी गाने सुनाऊँ आप लोगों को, और आप लोगों की में से किसी की फरमाइश ना हो, लेकिन हाँ उन लोगों की फरमाइश चलेगी जो कि मतलब ओल्डी गोल्डी गाने की फरमाइश करेंगे. ये बहुत ही प्यारा सा गाना हम लिस्ट में लगा चुके हैं. और सियासत विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हैं. रऊफ मक्सी का गाना सुनाएं. जी बिल्कुल, आपको कल सुनाएंगे रऊफ मक्सी का गाना. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं.

0: अच्छा, दर्दे दिल कहती हैं कि सदरा मैं आज फिर जाऊंगी मीरपुर खास, अगर क्रीम मिली तो लेकर आऊंगी शो के बाद, शो सुन लूं पहले। ठीक है ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा ठीक है कि मिला प्रोडक्ट या नहीं मिला। ऐसा कहते हैं असा की कुछ डी मोकल खपे इधर खां कोई वापस इंदासी मोटी। चलो ठीक है, बक्तली सियाल हमारे साथ मौजूद है। हेलो,
1: प्यार करने लगे।
0: अच्छा, आरजी भला से मर्सद माजूद है। हेलो, कैसे हैं?

अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि सब पहले इंसान अपने घर में, सबसे पहले इंसान अपने घर में इज्जत बनाए क्योंकि उससे कोई बहाना बनाना ना पड़ेगा. अच्छा मतलब यह गलत है, असानी घर में इज्जत कोने का मन यह गाल. हाँ.

0: बन गया।
1: ओके, सो ये गाना हमने एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक होने वाला है, और ये गाना शायद अली बबर की आवाज में होने वाला है। तो शायद बबर का गाना सुनेंगे और उसके साथ साथ भाई जान आपको बताएंगे कि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट से, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये हमें बता दिया करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप खूबसूरत होना चाहते हैं तो खूबसूरत होइए। और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और डायल करते रहिए 03 15 799 0595।

0: ये तो आपने किशोर भाई बेइज्जती कर दी। इट्स सोनू हमारे साथ, सोनू आपको वेलकम हो गया।
1: खिलने लगी।
0: चाचा कहते हैं कि वाइट एश लवली क्रीम यूज करेंगे। वाइट एश की लवली क्रीम भाई सारे लोग ही यूज करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वासा भाई भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासा भाई। अच्छा आदिल कहते हैं कि ये वाला ओल्डी गाना, ये वाला हाँ वैसे ये गाना मेरा फेवरेट है, लेकिन ये इंडियन गाना है। बात यहाँ पर आकर बिगड़ जाती है।

अच्छा कश्यप, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया. और कश्यप खान भी हमारे साथ मौजूद है. मुझे नहीं पता कि ये दोनों अलग अलग हैं. वेल, आप दोनों को वेलकम करते हैं. एक कश्यप जो पैनल पर मैसेज करती है, दूसरी जिसने कमेंट किया था. ओके, तो सब लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया, आप हमारे शो में शामिल रहते हैं. आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने होने का एहसास लाते हैं और आप प्रोग्राम में मोहब्बतों के साथ रहते हैं और आप इस्तेमाल करते हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स. अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई डी स्किन में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है. बाकी वाइट एज के तो आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते जाए. ईद पर तो लाजमी आप ट्राई कीजिएगा वाइट एज लवली क्रीम को. और इसी के साथ साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त आ चुका है. वरी इंशाल्लाह सुभाणे मुझे अमा से मुलाकात थी हमारे 1 बजे का 3 बजे ते तमाम जो सुन साथ हूं दुआ है. सो पंजो ओ इनो सरो ख्याल रखना, किसी का गलती थी मुझे तमाम माजरत कया पई. सो मुकरानी नाही बाबू से सलामत साथ सलामत. अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

ॻाल्हाईंदे चयो आहे त तेहरान सां मुआदो न थियो त प्लान बी बि मौजूदु आहे, मुआदो थियो त अबन हुरमस खुली वेंदो, ईरान सां डील असांजी पहिरीं तरजीह आहे। ईरान अमरीका जे मुतालबनि खे अमन ॻाल्हियुनि में सभ खां वॾी रंडक करार ॾेई छॾियो। ईरानी पहिरीं वज़ीर अब्बास इराक़ची जो गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल सां फोन ते राब्तो। अब्बास इराक़ची चयो आहे त अमरीका माज़ी में अधूरनि वाइदनि ऐं फ़ौजी हमलनि ज़रिए सफ़ारतकारी खे नुक़सान पहुचाईंदो रहियो आहे। तेहरान पाकिस्तान जे सालसी में अमन ॻाल्हियुनि में संजीदगी सां हिसो वठी रहियो आहे। हिन चयो गोदरेज सफ़ारती अमले जारी रखण ते ज़ोर भरियो। कतरी वज़ीर आज़म जो ईरानी पटी वज़ीर अब्बास इराक़ची सां फोन ते राब्तो। अमरीका ईरान में जारी ॻाल्हियुनि में थींदड़ अकबराई ते ॻाल्हियूं कतरी वज़ीर आज़म अब्बास इराक़ची ते मसइले जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए करण ते ज़ोर भरियो। अब्बास इराक़ची सूरतहाल ते ओमान जे हम मनसब सां बि ॻाल्हि ॿोल कई, सफ़ारती कोशिशुनि ते ग़ौर कयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 338 5569।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर, राबते जे लाइ 0320 18 00 003।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-800।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुन जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-03-00-33-8569।

0: middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir, we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां लगातार राब्ते में आहियूं। उमीद आहे त ईरान सां जल्द मुआदो तय थी वेंदो। अमरीका जे परे वज़ीर मार्को रूबियो स्वीडन में साफ़िनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त ईरान सां मुआदो न थियो त प्लान बी बि मौजूदु आहे। मुआदो थियो त अमन हुरमस खुली वेंदो। ईरान सां डील असांजी पहिरीं तरजीह आहे। ईरान अमरीका जे मुतालबनि खे अमन ॻाल्हियुनि में सभ खां वॾी रंडक करार ॾेई छॾियो। ईरानी परडे वज़ीर अब्बास इराक़ची जो गडि॒यल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल सां फोन ते राब्तो। अब्बास इराक़ची चयो आहे त अमरीका बाज़ी में अधूरनि वाइदनि ऐं फ़ौजी हमलनि ज़रिए सफ़ारतकारी खे नुक़सान पहुचाईंदो रहियो आहे। तेहरान पाकिस्तान जे सालसी में अमुन ॻाल्हियुनि में संजीदगीअ सां हिसो वठी रहियो आहे। अनितियो गोथरेस सफ़ारती अमल जारी रखण ते ज़ोर भरियो। कतरी वज़ीर आज़म जो ईरानी परडे वज़ीर अब्बास इराक़ची सां फोन ते राब्तो। अमरीका ईरान में जारी ॻाल्हियुनि में थींदड़ अगवराई ते ॻाल्हियूं। कतरी वज़ीर आज़म अब्बास इराक़ची ते मसइले जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए करण ते ज़ोर भरियो। अब्बास इराक़ची सूरतहाल ते उमान जे हम मनसब सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। सफ़ारती कोशिशुनि ते ग़ौर वीचार कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे टिनि ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते बीजिंग पहुची पियो। एयरपोर्ट पहुचण ते वज़ीर आज़म जिब चीनी अख़्तियारनि ऐं आॾो आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म चीनी सदर वज़ीर आज़म ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। पाक चीन लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। अमरीका जे नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौरु मुक़रर थियल तुलसीअ 30 जून 2026 ते उहिदे छॾींदी। अमरीकी मीडिया मूजिबि तुलसी ईरान जंग बाबति ट्रंप इंतिज़ामिया खां अलॻि मौक़िफ़ रखंदी हुई।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गुच्छन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100।

0: సింధ్ ఆర్డినెన్స్ కా పేరు సింధ్ రెస్ట్రిక్షన్ అర్బన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏరి ప్రెమిసిస్ ఆర్డినెన్స్ హుందో హుయో ఉన్న ఆర్డినెన్స్ మే ఛా హుయో త ఆల్ ఆఫ్ సడన్ జకో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ థియో ऐं रेंट पंहिंजी मर्ज़ी ते वता वेंदा हुया, हर प्रेमिसिस जा अलॻि अलॻि रेंट हूंदा हुया, ऐं कुझु प्रोविंसिस में माण्हुनि खे रहण जी जॻह मिलंदी, कुझिनि खे न मिलंदी, हर एरिया जा हिकिड़ा अलॻि अलॻि रेंट्स जेको आहे न तय थी विया. उहो हिकिड़ो पर्टिकुलर माना हिकिड़ो अहिड़ो क्राइटेरिया न हुयो जिते माण्हू को रेंट फिक्स करे सघे, जंहिंमें टेनेंट खे बि बेनिफिट मिली सघे ऐं लैंडलॉर्ड खे बि लैंडलॉर्ड खे बि जेको आहे न उन मां बेनिफिट मिली सघे. सो सिंध रेंट प्रेमिसिस ऑर्डिनेंस या असां जेके चऊं रेंट प्रेमिसिस ऑर्डिनेंस जो मेन सोल पर्पज़ इहो ई हो के टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट, के उन्हनि जे विच में हिकिड़ो अहिड़ो बैलेंस क्रिएट कयूं के एज़ पर एग्रीमेंट न उहो हिक ॿिए खे इलीगल एवेक्शन करे सघनि, न हिक ॿिए जे मथां केसिस करे सघनि, न उन्हनि जी बेसिक नेसेसिटीज़ कोई बंदि करे सघे, ऐं प्लस में हिकिड़ो स्मूथ ऐं फ्रेंडली जेको
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुप ऑर्डिनेंस जेको आहे त टेनेंट लैंडलॉर्ड एंड रेंट प्रीमिसिस रेंट कंट्रोलर इन्हनि जी लीगल डेफिनेशन असांखे
0: लीगल डेफिनेशन मां ईअं सम्झाईंदुमि, लैंडलॉर्ड इज़ अ पर्सन हू इज़ अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी.
1: Okay.
0: who wants to let out his property to someone, jeke sa chano man want to let out demise premises, and premises jo chahe premises mana jaga, theek hai. Tenant jo matlab a person to whom the property or to whom the premises ya premises ya building is given on the rent, jeke kiraye te maswar te jaga deni di hone hone ke sath tenant chahunda.
1: Okay.
0: Controller is a person jeko fair rent उन्हनि जे विक्त में थींदड़ इख़्तिलाफ़, उन्हनि जे विक्त में विच में थींदड़ जेके बि मामलात हूंदा, जेके बि लीगल इशूज़ आहिनि, उन्हनि खे हैंडल करे, उन्हनि खे सॉर्ट आउट करे, ऐं इट इज़ अ ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशनल गवर्नमेंट. कोई बि सीनियर सिविल जज या कोई बि अहिड़ो सिविल जज जंहिंजी एग्ज़ेक्ट 3 years जी जेका न प्रैक्टिस हुजे या उनजी सर्विस हुजे जुडिशरी में, उहो अपॉइंट थींदो आहे बाय सिंध गवर्नमेंट.
1: ऑल राइट. अच्छा शिबा साहब, हीअ त असां टेनेंट ऐं लैंडलॉर्ड सम्झी वियासीं, रेंट बि सम्झी वियासीं, रेंट कंट्रोलर ते असां अञा ईंदासीं, हिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ॾिसंदासीं, रोल ॾिसंदासीं हिन जो छा आहे. उन खां पहिरियां असां इन ते ॻाल्हाइणु चाहींदासीं त वर्बल रेंट एग्रीमेंट ऐं लीगली, अच्छा वर्बल रेंट एग्रीमेंट हिकिड़ो थींदो आहे त बाबा ठीकु आहे पहिरीं खां जेको आहे त किराओ वठिजांइ, ठीकु आहे, ऐं हिकिड़ो वरी रिटन में थींदो आहे. वर्बल जेको रेंट एग्रीमेंट आहे उनजी लीगली केतिरी इंपॉर्टेंस आहे?
0: वर्बल बि क़ाबिले क़बूल आहे बाबर, वर्बल बि जी बि सेम अहमियत आहे जेतिरी रिटन जी अहमियत आहे, प्रोवाइडेड दैट के कॉम्पिटेंट जे हुन में विटनेस अवेलेबल हुजनि, कॉम्पिटेंट विटनेस बि वर्बल में बि कॉम्पिटेंट विटनेस हुजनि ज़रूरु. अगरि कॉम्पिटेंट विटनेसिस बि आहिनि ऐं किरायेदार ऐं मकान मालिक जे विच में अगरि को रेंट ते पाए थिए थो पियो या कोई बि हुन जे विच में हिकिड़ो एग्रीमेंट थिए थो जेके असां टेनेंसी एग्रीमेंट चवंदा आहियूं, अगरि को हुनखे प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड पंहिंजी प्रॉपर्टी मकान मालिक प्रॉपर्टी आहे शॉप आहे कुझु बि आहे अगरि ॾियणु चाहे थो पियो त हिकिड़ो रेंट एस पर लोकेलिटी जे हिसाब सां जेको लोकेलिटी में रेंट हले थो उहो ई हुनखे जेको उन ई रेंट ते उनखे मसवाड़ ते उहा जॻह ॾियणी पवंदी.
1: मतिलबु वर्बली तव्हां सम्झो पिया त जेको रेंट एग्रीमेंट आहे साम्हूं अहिड़ा केसिस न आया आहिनि त हिन में मतिलबु वर्बली त ठीकु आहे माण्हू ॻाल्हाए छॾंदो आहे, पोइ हिन में कुझु कंफ्यूजन न हूंदी आहे, तव्हां एतिरा न चया हुया एतिरा पैसा चया हुया.
0: बसि दिस इज़ बिग डिफरेंस रिटन में, छा आहे त रिटन में अगरि वंस अ कॉन्ट्रेक्ट इज़ रिटन उन में तव्हां टर्म्स एंड कंडीशन कैटेगोरिकली तव्हां लिखी छॾियूं आहिनि, स्पेसिफिकली तव्हां मैंशन थियल आहिनि, उन में डेट बि मैंशन थियल आहे त हिन सां महीने खां वठी करे मंथ जे आख़िरी महीने ताईं दे विल बी अवेलेबल हेयर. उन खां पोइ अगरि हे चाहिनि त असां सां गॾु नोवेशन करे सघंदा, नोवेशन जो मतिलबु आहे टू मेक अ न्यू कॉन्ट्रेक्ट, की असां सां न्यू कॉन्ट्रेक्ट या न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट असां सां कैरी ऑन करे सघनि था. हाणे उन में छा थींदो आहे त उन में जेके असां टसल चवजे प्रॉब्लम्स चवजे इशूज़ चवजे उन में लिटिगेशन थियण जा चांसिस तमामु घटि थी वेंदा आहिनि. वर्बल में लिटिगेशन थियण जा चांसिस वधी वेंदा
1: आहिनि.
0: सपोज़ हाणे लैंडलॉर्ड हिकिड़ो किरायो चए थो मां हिन पर्टिकुलर जॻह जो किरायो तव्हां खां 15,000 वठंदुमि, हाणे हुन ते एडवांस बि 50,000 एडवांस बि ॾेई छॾियो, जॾहिं किरायेदार शिफ्ट थियो, शिफ्ट थियण खां पोइ चयो साईं मां तव्हांखे चयुमि 20,000, हाणे हुननि चयो साईं तव्हां 20,000 चयो ई न हुयो, तव्हां त मूंखे 10,000-15,000 चयो हुयो, हाणे इते थियो कॉन्फ्लिक्ट. सो हिन कॉन्फ्लिक्ट खां बचण लाइ सभिनि खां बहितर इहो आहे त वर्बल जी पंहिंजी अलॻि हैसियत आहे, बहितर आहे माण्हू एग्रीमेंट कराए वठे, उहो बि रिटन फॉर्म में, प्लस हिन खे रजिस्टर बि कराए छॾे ऐं हिकिड़ी कॉपी कंसर्न हद जे रेंट कंट्रोलर वटि बि प्रोवाइड करे छॾे त हे जॻह मसवाड़ ते वई आहे.
1: ऑल राइट, अच्छा हाणे असां रेंट कंट्रोलर जी तरफ़ अचूं था. रेंट कंट्रोलर जो रोल छा आहे ऐं कहिड़ी सूरत में जेको आहे त रेंट कंट्रोलर जेको आहे त कहिड़ा केसिस हैंडल करे सघे थो?
0: रेंट कंट्रोलर ईअं चओ त असां ईअं चओ जीअं मां ईअं सम्झायां तव्हांखे कि रेंट कंट्रोल इज़ अ जज. उहो हिकिड़ो सिविल जज आहे जेके हिकिड़ा विद इन रेंट ऑर्डिनेंस में हिकिड़ा पावर ॾींदा आहिनि त तव्हां रेंट मैटर सां जेतिरा बि रिलेटेड इशूज़ आहिनि उनखे तव्हां टेकल डाउन कयो. सो रेंट कंट्रोल इज़ बेसिकली एज़ अ जज दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोफेशनल गवर्नमेंट. सीनियर सिविल जज हुजे, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायमि, उहो सिविल जज जंहिंजी एटलीस्ट जॉब में जेकी आहे न एक्सपीरियंस 3 सालनि जो हुजे. हाणे इन जो मेन पर्पज़ छा आहे? रेंट कंट्रोलर जो मेन पर्पज़ इहो आहे, सभु खां पहिरियों फेयर रेंट डिसाइड करे, कंहिं बि प्रेमिसिस में फेयर रेंट आहे, कंहिं बि लोकेलिटी में अगरि रेंट हद खां वधीक न हुजे. मां मिसाल वठां तव्हांजी हिन बिल्डिंग जो, जंहिं बिल्डिंग में असां अवेलेबल आहियूं. हाणे हिन बिल्डिंग में सभु घर हिकु जहिड़ा आहिनि, हिन बिल्डिंग में सॼी जॻहियूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि, ठीकु आहे. अगरि सपोज तव्हांजे हिन फ्लोर जो अगरि कोई किरायो तव्हांखो 25,000 वठे ऐं साम्हूं वारे फ्लेयर जो किरायो जेको फ्लोर जो किरायो आहे या घर जॻह जो किरायो उहो 30,000 वठे, हाणे हिते डिफरेंस अची वियो, इहो फेयर रेंट न थियो. अगरि इन सिलसिले में चाहियो त अगरि उन जेका 30,000 किरायो वरितो थो वञे, उहो रेंट कंट्रोल ॾे एप्लीकेशन ॾेई करे उहो किरायो उन खां 25,000 ते वापसि खणाए सघे थो. छो त सर विद इन प्रेमिसिस में सॼी बिल्डिंग में जॾहिं किरायो 25,000 आहे त मूंखां 30,000 छो थो वरितो वञे? ठीकु.
1: ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे पियो अगेंस्ट वञे पियो त पोइ रेंट कंट्रोलर
0: वञे? मां जीअं चयुमि, हाणे तव्हांखे ॿुधायमि त रेंट एग्रीमेंट अगरि तयारु थिए थो पियो, रेंट एग्रीमेंट सभ खां पहिरियों तव्हां मेकआउट कयो, रेंट एग्रीमेंट खे रजिस्टर्ड करायो. रजिस्टर्ड करण खां पोइ हिकिड़ी कॉपी तव्हां रेंट कंट्रोलर वटि बि जमा करायो. रेंट कंट्रोलर उन ई हद जो ज्यूरिसडिक्शन जो जंहिंमें इमूवेबल जेके प्रेमिस चवंदा आहिनि उहा प्रॉपर्टी अवेलेबल हुजे. उन सां छा थींदो त अगरि इन फ्यूचर अगरि को केस वग़ैरह थिए थो त उहा कॉपी हुननि वटि ऑलरेडी पई हूंदी, जंहिं सां एज़ अ रेंट कंट्रोलर जी हैसियत में असां तव्हांखे इहा कॉपी प्रोवाइड कयूं था. इन फ्यूचर कॾहिं अगरि अहिड़ो को मामिलो लिटिगेशन जो अची वञे त तव्हांखे ऑलरेडी ख़बर हुजे त इहो मामिलो असां ॿिनि पार्टीज़ जे विच में आहे.
1: ऑल राइट, अच्छा इहो जेको आहे त डिस्प्यूट अगरि थिए पियो हिन विच में त रेंट कंट्रोलर खां अलावा सिविल कोर्ट बि माण्हू वञी सघे थो या रेंट कंट्रोलर?
0: इहे अथॉरिटी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहे एक्सक्लूसिव पावर रेंट कंट्रोलर खे ई आहिनि. जेतिरा बि रेंट सां इशूज़ हूंदा आहिनि रेंट कंट्रोलर हलाईंदो, या त समरी बेसिस ते, असां हिनखे समरी बेसिस चवंदो, या समरी बेसिस ते केस हलाईंदो या फुल फ्लेज बेसिस ते केस हलाईंदो. समरी बेसिस ते हूंदो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम केस खे डिसाइड करणो हूंदो आहे. कुझु केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें एविडेंस ऐं प्लस में डिटेल्ड जंहिंमें क्रॉस एग्ज़ामिनेशन थींदी, WS अची रिटन स्टेटमेंट बि अची वेंदी, शू फ्रेम बि थींदा, उनखां पोइ एट डिटेल एविडेंस बि हलंदी, शाहिद बि ईंदा, उहो फुल लेंथ बि केस हली सघे थो ऐं समरी बेसिस ते बि केस हली सघे थो.
1: अच्छा हाणे तव्हां इहा थोरी मिसाल ॾिनी फ्लोर वारी 25,000 ऐं 30,000 वारी, इन तरह मुंहिंजो ध्यानु हलियो वियो त रेंट फिक्सेशन जेकी आहे त थिए पई, इन जो थोरो असांखे ॿुधायो त अंडर दिस ऑर्डिनेंस कीअं करे सघिजे थी, ऐं सेकेंडली अगरि को डिस्प्यूट करे पियो, को इन जे अगेंस्ट वञे पियो, उन जे लाइ कहिड़ो प्रोसेस आहे?
0: फेयर रेंट जो पर्पज़ ई सिर्फ़ु इहो ई आहे त कोई बि जॻह आहे कंहिं लोकेलिटी में आहे. हाणे हिनखे मिसाल था वठूं,
1: जीअं
0: तव्हां हॉस्टल्स ॾिठा हूंदा, जीअं अगरि तव्हां सखर में असां रहूं था त अगरि तव्हां पंहिंजो IBA जी तरफ़ वेंदो त हिते हॉस्टल्स इलाही आहिनि, त हिते जॉइंटली बि छोकिरा रहनि था पिया, इंडिविजुअल बि रहनि था पिया. हाणे हुते सॼा बंगला ठहियल आहिनि. हाणे उहो बंगलनि जे हिसाब सां उनजो हिकिड़ो रेंट फिक्स आहे.
1: सही.
0: कंहिंजो मिसाल टी अगरि हिकिड़ी प्रेमिस, हिकु घिटी आहे, हिकिड़ी गली आहे, सर्कमस्टेंसिस ऐं उनजा जेकी रोड आहे, रस्ता त साॻिया ई आहिनि, बिल्डिंगूं बि तक़रीबन ईअं सम्झो हिकु जहिड़ियूं आहिनि. हाणे किथे 30,000 रेंट थी वञे, किथे 35,000 रेंट थी, किथे 40,000 रेंट थी वञे, त उन मां कोई बि टेनेंट वञी करे इहो क्लेम करे सघे थो रेंट कंट्रोलर वटि त लैंडलॉर्ड असां खां ज़्यादा किरायो छो थो वठे, जॾहिं त पूरो रेंट, पूरी प्रेमिस जो, पूरे एरिया जो रेंट 30,000 आहे, असां को 40,000 छो था वता वञनि. उन में उनजे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दाख़िल कंदा रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोलर उनखे छा कंदो, बाबंद कंदो त किरायो तव्हां वापसि 25,000 खणी अचो, 30,000 ते वापसि खणी अचो, छो त ऑलरेडी पूरी प्रेमिसिस में, पूरी जी पूरी एरिया में किरायो सिमिलर बेसिस ते हुजे.
1: ऑल राइट,
0: बिल्कुलु.
1: अच्छा ही ऑर्डिनेंस अगर रेंट थे मुखे थोड़ो ध्यान वरी बे तरफ दिमाग में सवाल आई जो ही जेको होटल्स वगैरह ते रूम बुक कराई बाइन उते भी जेको आते पै जी मनमानी जेके रेट्स वटा अच्छा ही ऑर्डिनेंस उनन ते लागू थे
0: उने जे लाइन टेंपरेरी आ
1: ऑल राइट वो मतलब वठी सकन
0: ता उने जेकडी पेंजी यूनियन
1: आ ही हॉस्टल वारा जेके अंत
0: हॉस्टल वारा इन करे अचन ता छोकरा रहन ता पया सालन दा साल रहन ता मंथली बेसिस से किरायो देता उने जो एग्रीमेंट थे तो असा जडे मिसाल के हिकड़े पर्टिकुलर सिटी में वनू था उते असा उनन सा को मुआयदो लिखत में था दियु पया जगह मिसाल जे जगह में मानु रहन ता पया
1: जी जी जी
0: जेके उते अचन ता स्टे करन ता ठीक आ वो उन सा बाउंड नहिं पर जेंजी प्रॉपर्टी आ जिनजी प्रॉपर्टी आ वो बाउंड थी सके तो पे त इन पूरे एरिया में जेत्रो भी किरायो हुंदो वो हिकड़ो ही हुंदो
1: ठीक है अच्छा प्रोसेस तमा जी बुधायो त अगर वधिक रेंट वठी पयो त कंट्रोलर रेंट कंट्रोलर डी वनन गुर्जे एप्लीकेशन खणी वनन गुर्जे केतरा डीएन में ये प्रोसेस थी विंदो ए केतरा डीएन में हु जेको त हुन के लैंडलॉर्ड के पाबंद बणाईंदा त बाबा ता जेको रेंट ओतरी वतो जेको हले पयो
0: कुछ मा छा चुम समरी बेसिस ते कुछ केसेस एड़ा हुनन के अगर उन में अगर मेलाफाइड शो थी तो वने के लैंडलॉर्ड इंटेंशनली किरायो वधाए करे जो ना सभी सा बेमानी करे तो पेंजी जगह जी किरायो वधाए तो जडे त लोकलिटी में वो किरायो ना अगर वो प्रूव तो थी वने तो विद इन 3 डी भी काफी न तो विद इन 4 का 5 महीनन में या 6 महीनन में सॉर्ट आउट करे वो किराए के वापस उन्हीं पोजीशन ते खणी वंदो
1: अच्छा इन सिचुएशन में ता छा रिकमेंड कंदो उनन के जेके समझन त बाबा ठीक आ सा रेंट वधिक वरतो वने पयो हाली फिलहाल त जगह वठूं वधिक रेंट में पो असा बाद में वनी करे रेंट कंट्रोलर ले वनेऊं या हो वेट करन रेंट कंट्रोलर ने वनी करे पो वनी जगह वठन
0: ई त 4 महीना थिंदो ई या अमूमन थिंदो ई या त असा के अग में खबर न हुंदी आ असा इन स्क्रूटनी कंदाऊं न असा पुछा कराईंदो असा सोचंदो रेंट ते जगह खपे
1: ओके
0: कुछ मानू हुंदा जे की डिटेल वठदान अगर सपोज के अगर के मानू के मसवाड़ ते जगह खपे या के उन के मसवाड़ ते जगह डारे छडी विच में हो पेंजो एकड़ो रोल प्ले करे मीडिएटर जो रोल प्ले करे वो पेंजो अमाउंट वटी हलियो वियो हाने जदे ता शिफ्ट थियो ता के बाद में खबर पई त बाबा मां किरायो इन शे जो सपोज एकड़ो एकड़े सम में तो दिया बियो मानु इन जो किरायो एकड़े बे सम में तो दे पियो त उन खा पो हो एकड़े लैंडलॉर्ड के पेड़ो नोटिस मोकल दो लैंडलॉर्ड के चवंदो सही हे जकी ता जकी जगह दिनी आ मकान मालिक ता मके जगह दिनी आ कंपैरेटिवली इन सागी लोकेलिटी में एरिया में असंजा ब्या माइटर भी रहंदा उओ ते एतरो किरायो नथा भरन ता सगो किरायो एतरो छोता वटो सपोज अगर मुजा रिलेटिव बाय स्टोरी बिल्डिंग में रहंदा मा भी बाय स्टोरी बिल्डिंग में रहा तो ठीक आ लोकेलिटी में कोई फर्क ना है तो ता मुखा एकड़ो पर्टिकुलर अमाउंट ता वटो हुनन का पर्टिकुलर अमाउंट ता वटो अगर हो इन गाल ते मने तो ठीक आ मा ता जो किरायो उते खणी नु अदरवाइज उए मानू उन जो रेफरेंस वठी करे रेंट कंट्रोलर के रेफरेंस करे सही इन्हीं लोकेलिटी में हे 4-5 घर आए जिन जो किरायो एतरो या मकान मालिक सागो या पर मुखा वधिक तो वटे हुनन का घट तो वटे
1: ओके ओके
0: जी
1: मतलब वो हाली रेंट ते रहन शुरू करे छन विच में उन दौरान
0: एप्लीकेशन दिसो न खबर न पौंदी
1: करे
0: कदे खबर जेनी खबर पे स्क्रूटनी कंदा से खबर पौंदी या असा छा कंदा त तकड़ में रही वेनो रहन स खा पोई अस के खबर पौंदी न जो किरायो छा हो
1: अच्छा कदें कदें जो इन यो भी थन्द ऑफर भी दिनी वी है लैंडलॉर्ड के यार इन डीजा मुख्य डीजा 5,000 अजाई मैं अनजस्टिस
0: असल में वजह चाहे डिपेंड करे तो एरिया टू एरिया हाँ सपोज मैं जो एरिया में रहा तो अनफॉर्चुनेटली
1: जी
0: पर मुझो तो एरिया पाड़ो तो नबिन के भी प्यारो होंगे पर अगर मैं ये चवा अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उते लाइट लोड शेडिंग 12-12 कलाक 13-13 कलाक लोड शेडिंग ट्रांसफार्मर अगर फाटी तो पे तो कोई जहमत नथो करे उते अचण जी ठीक है सो अगर मैं उन हिसाब से अगर चवा तो अगर कोई मुखे रेंट ते अगर कोई चे मां हिन एरिया में ता रेंट ते रहन तो अचा मां उनके चंदुम 10,000 वधिक भरे बी जगह ते हलियो हेडी नहीं जे तो डिपेंड करे तो एरिया जे अगर कोई मानो 10,000-5,000 वधिक दई करे चे तो मां सुठी एनवायरमेंट में रहा तो उन में को हर्ज ना है अगर अननेसेसरी को रेंट वधाए तो अननेसेसरी उनन जे लाया अननेसेसरी को रेंट वधाए तो इलीगल तरीके सा उन जे मथो यो कानून लागू थी वेंदो
1: बिल्कुल इन में ऑर्डिनेंस में जेको सेक्शन 8 में रेंट इंक्रीज रेगुलेशन भी आहे
0: एग्जैक्टली
1: इन ते पाण गालहिंदासीं पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हलदासीं सो लिसनर्स प्रोग्राम जारी आहे लीगल कॉर्नर में बाबर शेख हमसां गॾु आहे मूंसां गॾु एडवोकेट शहबाज हफीज़ साहब मौजूदु आहिनि टॉपिक सां रेलिवेंट तव्हांजा सवाल हुजनि या इन खां अलावा तव्हांखे का लीगल कंसल्टेशन घुर्जे त लाइव वेठा आहिनि शहबाज साहब तव्हां इन्हनि खां पुछी सघो था फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हांखे जेका त लीगल एडवाइस ॾींदा अॼु जी तव्हांखां फी न वरिती वेंदी ऐं असांजो नंबर आहे 03000 1134 88 सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं असां सां गॾु रहिजो

0: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: क्या देख रहे हो
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी ये

0: लीगल कॉर्नर में बाबर शेख हवा सा गड है जी एफ एम नेटवर्क सा तवाही प्रोग्राम बुधी रहा एंड प्रोग्राम में मुसा गड स्टूडियोज में मौजूद आए एडवोकेट शहबाज हफीज साहब जिन मुख्य हिंसर बुधन शुरू किया उन जरूर बुधाई हल शहबाज हफीज साहब जो दह साल वी तकरीबन एडवोकेसी से वाबस्ता एज वेल एज लेक्चरार भी लॉ कॉलेज में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी इन तमाम घना क्वालिफाई थियल प्रोग्राम में लाइव मौजूद हैं तुम लाइव कॉल के जरिए टॉपिक का अलावा भी इन सवाल या मशवरा अबाउट द लॉ करे सको था सो असो नंबर है 03000113488 शहबाज साहब ब्रेक से हलन का पैर मुल कई तो असा गाली इन सेक्शंस से ऑर्डिनेंस से अच्छा सेक्शन 7 जो है ऑर्डिनेंस उनमें लिखल है रिसिप्ट ऑफ रेंट जो लैंडलॉर्ड से जरूरी आ मेडिटरी आए तो रिसिप्ट जरूर दे अक्सर तुम दिखो है तो इन वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट थी वी है टेनेंट चीन तक रेंट दिनी हुई वो चो यार मुख्य तो रेंट न मिली आ ठीक है तो इन हवाले से थोड़ा वाजे कदा तो इन सेक्शन में रिसिप्ट जो कि जिक्र थे कें रहनी है
1: माशाल्लाह सा प्रोग्राम के हलाइंदे लाइंदे तहां भी एक्सपर्ट थी आओ माशाल्लाह सा सवाल भी ताई करे छियो सो मां बस ने सिर्फ लव्ज एंड मेड कंदम के सिर्फ ए सिर्फ लिटिगेशन का बचन जे लाए
0: जी
1: लिटिगेशन का बचन जे लाए अगर कोशिश कयो त रिसिप्ट्स वठी छडो
0: ओके
1: सुभाणे या परी या अगर इन टाइम इन फ्यूचर टाइम में अगर कोई भी लैंडलॉर्ड चवे तो त मखे किरायो न मिलियो
0: ठीक है
1: ता एकडो किरायो देई छडियो जी असा वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में अगर वर्बल एग्रीमेंट में अचूं था तो असा कदें कदें मसवाड़ जो किरायो दई छड़ मसवाड़ जो किरायो देण खां पोइ ऑल ऑफ सडन कुछ भी इंसान है ना जो चवंदा आहिनि एरेज ह्यूमन फॉरगिव इज डिवाइन इंसान खता जो पुतलो आहे माफ़ करण वारी अलाह जी ज़ात आहे सो उन में छा थींदो आहे त तव्हां चवंदा मां किरायो ॾेई चुको आहे मूंसां मुंहिंजो हिकिड़ो केस थियो ईअं पोइ असां केस

0: कई से हुआ जैसे हिन रात जो हिन टाइम ते तां के ही कपड़ा पातल या हे तां के टोपी पातल ही तां पान दरवाजे ते आयो मा आई विटनेस निशे जो 3000 असा केड़े करे दिना से जे में तां यो चयो त 1000 जो नोट फाटल आ
1: ओके
0: इन लफ्ज का पो हन माजरत कही ते हा यार मा भूली वयो मुखा ज़हन मा लियो मा माजरत तो क्या तां मके किरायो देई चुका तो अगर सपोज यही रिसेप्ट दिनल होजे आ मकान मालिक कटे करे देई हले वन्या है वठी छड्या त यो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही न थिया सो अगर काई भी शॉप या दुकान या घर किराए ते दिनल आ त कोशिश कियो त अगर प्रोफेशनल तरीके सा हन त मकान मालिकन के भी पंहिंजी हिकड़ी जॻह जी रसीद जी पूरी जो पूरो ठाहिण खपे हर महीने रिसेप्ट कटे करे उन्हनि खे ॾेई छॾे
1: तव्हांजो रिसेप्ट अगर न बि अगरि ॾियो त पेमेंट कोशिश कयो कैश में न ॾियो
0: कैश में न ॾियो या तव्हां थ्रू ट्रांसेक्शन ॾियो या थ्रू इज़ी पैसा इज़ी पैसा करे छॾियो या थ्रू बैंक करे छॾियो तव्हां वटि रिसेप्ट अवेलेबल हुजे
1: ऐं इहो रिकॉर्ड रखणु घुरिजे कॾहिं कॾहिं इहा बि भुल थी वेंदी आहे त ॿ रेंट उहा तव्हां एडवांस ॾेई चुका हूंदा आहियो वरी चवंदा आहियो यार खुटनि था पैसा
0: ईअं बि हूंदो
1: आहे त कुझु फीडबैक शामिल
0: कयो इहो न अधु पैसा ॾेई छॾंदऊं साईं मूंखे ज़रूरत आहे ॾेई छॾियो वरी महीने जे आख़िर में ॾेई छॾण जो कुझु मकान मालिक इहे हूंदा आहिनि त महीने में सॼो किरायो वठी वेंदा आहिनि हफ़्ते हफ़्ते जे डिफरेंस सां अॼु 2000 ॾेई छॾो अॼु 4000 ॾेई छॾो अॼु 5000 ॾेई छॾो किरायो सॼो कढी वेंदा आहिनि पर इन जो बहितर इहो आहे त पोइ माण्हू हुननि जी रिसिप्ट आहे छॾे
1: ऑलराइट अच्छा फीडबैक शहबाज़ साहब शामिल कंदासीं कुझु मैसेजिस आया आहिनि जेके मां प्रोग्राम में शामिल कयां पियो असांखे रज़ा शाह साहब ज्वाइन कयो आहे चवनि पिया त अगरि मालिक मकान बग़ैर नोटिस के किरायेदार को घर खाली करने का कहे तो कानून क्या कहता है इसके ऊपर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और अंडर दिस ऑर्डिनेंस हमें जवाब दें
0: मकान मालिक अगर किसी
1: बगैर नोटिस दे किरायेदार के खाली इन
0: पहिरों त पॉसिबल मकान मालिक के इजाज़त ई न आहे त बगैर नोटिस एटलीस्ट रेंट ऑर्डिनेंस चए थो एटलीस्ट मकान मालिक खे अगरि नोटिस ॾियणो आहे त उहो 60 ॾींहं अॻु में
1: ओके
0: 60 डेज़ अॻु में ऐं हाणे त हिकिड़ो रवाज़ थी वियो आहे महीनो अॻु में था ॾियनि पिया
1: पर
0: रेंट प्रेमिसिस चए थो 60 डेज़ अॻु में 2 मंथ्स पहिरियां उन्हनि खे नोटिस ॾियणो आहे उन में उन्हनि खे रीज़न ॾियणो आहे जस्टिफाइड रीज़न ॾियणो आहे त तव्हां या पंहिंजो तव्हांजो एग्रीमेंट जेको आहे न कंप्लीट थियण वारो आहे या त तव्हां हिन रेंट एग्रीमेंट खे कैरी ऑन कयो जेके असां नोवेशन चवंदो या अगरि तव्हां इहो जेको आहे न पीसफुली जॻह खे वेकेंट करे छॾो हुन में जस्टिफाइड रीज़न ॾियण खां पोइ वञी करे मकान मालिक खे टेनेंट खे इवेक्ट कराए सघे थो अदरवाइज़ हुनखे रेंट कंट्रोलर हिकिड़ी रेमेडी आहे टूवर्ड्स रेंट कंट्रोलर सिविल लिटिगेशन
1: ओके आशा साहब उम्मीद आहे जवाबु अव्हांखे मिली चुको हूंदो कुझु ॿिया बि मैसेजिस आहिनि कुझु कॉलर जी तरफ़ बि लेट्स सी लाइन ते असां सां गॾु केरु आहिनि अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम सर अली मदद
1: हा त मौला अली मदद केरु था ॻाल्हायो भाउ
2: सर मां मुंहिंजा भाउ छा लॻाए सचीव मां ॻाल्हायां
1: ओके दादा तव्हां कहिड़ो सवाल पुछणु चाहींदव
0: वेलकम सर सर आई एम फाइन सर हाउ आर यू सर
2: सर शफ़ी मोहम्मद ॻाल्हायां
0: माशाल्लाह सर
1: ओके शफ़ी मोहम्मद साहब तव्हांजी महिरबानी था प्रोग्राम ॿुधियो
0: ऐं
1: तव्हांखे वेलकम पिया चवनि
0: थैंक यू वेरी मच
1: तव्हांजी महिरबानी अदा सो हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कंदासीं पोइ असां टॉपिक जी तरफ़ हलंदासीं लेट्स सी लाइन ते गॾु केरु आहिनि नंबर मां रिपीट कयां पियो 03000113488 अस्सलाम वालेकुम जी अदा जी केरु था ॻाल्हायो भाउ
3: अली हसन बाबा
1: जी अदा अली हसन साहब कहिड़ो सवाल मां पुछणु चाहींदव किराए ते जॻह वरिती तव्हां ठीकु आहे तव्हांजो आवाज़ क्लियर नथो
0: अचे मूंखे थोरो
1: हा किराए ते जॻह वरिती हुयव हुनजो पोइ छा पिया चओ अॻिते बाबो साहब सॉरी यार तव्हांजो आवाज़ क्लियर नथो हुजे जस्ट असां इहो सम्झी सघूं पिया त तव्हां किराए ते जॻह वरिती हुई तव्हांजी महिरबानी शहबाज़ साहब मूंखे लॻे पियो असांखे कॉलर वधीक शामिल करणु छाकाणि त टॉपिक असांजो
0: इम्पोर्टेंट
1: टॉपिक आहे ऐं माण्हू ॼाणणु चाहींदा स्पेशली टेनेंट ऐं लैंडलॉर्ड जा पाण में सो लेट सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहिनि अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला तव्हां पंहिंजो ॿुधायो कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कंदासीं नेन असां टॉपिक खे कैरी ऑन कंदासीं लेट्स सी अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम बाबर भाउ
1: अलहमदुल्ला भाउ केरु था ॻाल्हायो
2: जी मावाचार है तो ईसाई पीर शेर का
1: ओके अदावकार केड़ो सवाल हम पूछण

0: दो।
1: साईं असां जो हिकिड़ो इहो आहे
0: जी जी
1: त कार्ड जेके ठाहींदियूं गाॾियूं हलंदियूं ॻोठण में कार्ड वग़ैरह ठाहींदियूं असांखे इहा थोरी सहूलियत हुई, मां सम्झां थो इहा सहूलियत वरी बंदि करे छॾींदुमि।
0: कहिड़ो कहिड़ो इलाइक़ो आहे तव्हांजो? ओके, नादरा वारी जेकी मोबाइल हूंदी उहे था चओ न तव्हां?
1: हा
0: बिल्कुलु दादा, तव्हांजी महिरबानी, असां जो हीउ प्रोग्राम ॿुधी रहिया हूंदा। जेके आला अख़्तियारियूं आहिनि, ज़रूरु इनशाला ताला इन ते ग़ौर करे वरी अगेन तव्हां ॾे उहे मोबाइल ज़रूरु मोकिलींदा। शहबाज़ साहब, अचूं पिया टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड जी तरफ़, अंडर द रेंट प्रिमिसिस ऑर्डिनेंस। अच्छा, हिन जे हिकिड़े सेक्शन में जेको आहे न, सेक्शन 8 में लिखियलु आहे रेंट इंक्रीज रेगुलेशन जे मुतालिक़, त रेंट इंक्रीज कैन हैपन ओनली एज़ पर लॉ। कीअं थो इहो इंक्रीमेंट लॻी सघे ऐं लॉ छा पियो चवे
2: इन लाइ? हाणे रिसेंटली मां टॉपिक सां रिलेटेड ई अगरि शइ पढ़ा पियो, मां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी अथॉरिटी पढ़ी 2010 जी।
0: ठीकु आहे,
2: ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चए थी की अगरि वंस अ रेंट हैज़ बिन फिक्स्ड, के टेन एग्रीमेंट जे हिसाब सां को रेंट फिक्स्ड थी वियो आहे बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली, बट इट कैन बी चेंज आफ्टर पीरियड ऑफ थ्री इयर्स। वंस इन एग्रीमेंट इज़ कंप्लीटेड, जीअं एग्रीमेंट ख़तमु थींदो उन जे 3 सालनि खां पोइ वञी करे तव्हां किरायो वधाए सघो था, प्रोवाइडेड दैट के उन में तव्हां 25% एड करे सघो था, न त 10% पर एनम जे हिसाब सां वधाए सघो था। हाणे कन्फ्यूजन थिए थो, जॾहिं हिकु जॻह ते लिखियलु त किरायो नथा वधाए सघो, पोइ वरी 10% एनम बि त किरायो वधणी आहे न। हिन जो मिसाल ईअं ॾिजे त शॉर्ट, मां नंढा मिसाल हिन करे ॾींदो आहियां जे असांजे ॿुधण वारनि खे ऐं असांजे जेकी ॾिसण वारनि खे थोरी ऑडियंस में हर क़िस्म जो माण्हू शामिलु हूंदो आहे। तव्हां 10,000 किरायो ॾियो था पिया, उनजो 10% एनम वधंदो, 3 सालनि तक किरायो हलंदो 10,000 ई, पर उन में एनम वधंदो, माना 10,300, 10,600, 10,900, जीअं 3 साल पूरा थींदा। हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे, साॻियो ई किरायो तव्हां 12,000 जो कयो, 15,000 जो कयो। नाउ इट इज़ अप टू द एज़ पर लॉ के 3 सालनि ताईं तव्हांखे हाली 10,000 ई रखणो आहे।
0: ओके, 3 सालनि ताईं 10,000 ई
2: तव्हांखे किरायो हलंदो,
0: ऐं 3 सालनि खां पोइ जीअं तव्हां चयो 10%,
2: छो की ॾिसो हुन में जीअं असां फेयर रेंट में अचूं, मां त हुन ई सवाल खे रिपीट थो कयां, फेयर रेंट में अचूं, लिमिट हूंदी आहे न, लिमिट छा हुजे फेयर रेंट में अचूं। फेयर रेंट जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त सॼी प्रेमिस जो किरायो साॻियो ई हुजे, ॿियो एनुअली टैक्स वधे थो पियो, प्रेमिस जी जॻह जी कंस्ट्रक्शन्स ऐं एनुअली जेको आहे न टैक्स लेविड, जेके चवंदा आहिनि एनुअल प्रेमिसिस वैल्यू जेकी आहे उहा वधे थी पई। ॿियो उन सां गॾु कुझु एडिशनल जेकियूं शयूं आहिनि, जीअं कंस्ट्रक्शन्स, रिपेयर, उहे बि शयूं वधनि थियूं, उन सभिनि खे नज़र में रखी करे पोइ हिकिड़ो रेंट फिक्स कबो आहे, उनखे असां चवंदा आहियूं रेंट फिक्स। हिन इहो सवालु उन सां ई रिलेटेड
0: आहे।
2: वंस जे तव्हां उहो फिक्स कयो था त देन यू हैव टू वेट फॉर द 3 इयर्स, 3 सालनि खां पोइ वञी करे तव्हां रेंट खे वधाए सघो।
0: 3 सालनि खां पोइ रेंट वधी वियो, उनखां पोइ
2: लैंडलॉर्ड ऐं टेनेंट जे विच में हिकिड़ो बॉन्ड प्लस में हिकिड़ी फैसिलिटी के 3 सालनि ताईं किरायो न वधंदो, एक्सेप्ट जेको 10% असांजो वधंदो आहे उन जे हिसाब सां।
0: सो कुझु फीडबैक जी तरफ़ हलूं पिया। अब्दुल सत्तार साहब चवनि पिया त छा घर मालिक किराए दौरान बिजली, गैस या पाणी बंदि करे सघे थो, अहिड़ी हालत में किराएदार छा करे? साईं बिल्कुलु, ऐं इन ते असां अचूं पिया सेक्शन 11 में बेसिक एमिनिटीज़ ते बि जेको आहे न ज़िक्र ॾियण लाइ, इन्हनि जो सवाल बि आहे त असां चाहींदासीं इन ते तव्हां थोरी वज़ाहत कयो।
2: बेसिक एमिनिटीज़ टेनेंसी एग्रीमेंट जे हिसाब सां बेसिक इन में एमिनिटीज़ इनखे ईअं चइबो आहे के अगरि कोई बि जॻह मसुवाड़ ते वञे थी पई या मसुवाड़ ते अची वई, लैंडलॉर्ड टेनेंट खे ॾेई छॾी, किराएदार खे ॾेई छॾी, 3 शयूं उन खां, हिकिड़ो तव्हां मशहूरु नारो ॿुधो आहे, रोटी, कपिड़ा और मकान, मांग रहा यारनि सां, ठीकु आहे। सो जॾहिं टेनेंट जीअं मसुवाड़ ते ईंदो आहे त हुनजी बेसिक 3 नेसेसिटीज़ आहिनि त लैंडलॉर्ड हुनजो गैस बंदि न करे,
0: ठीकु आहे,
2: लैंडलॉर्ड हुनजो पाणी बंदि न करे,
0: ठीकु आहे,
2: लैंडलॉर्ड हुनजी बिजली बंदि न कराए,
0: कंहिं
2: बि सूरत में हुनखे नाहिन कराइणी, छो की न त उहो लाज़मी जॻह हूंदी छा जे लाइ, जेको असां मसुवाड़ किरायो ॾींदा आहियूं असां दीवारनि जो थोरी ॾींदा
0: आहियूं,
2: असां किरायो ॾींदा आहियूं हुन में रहण जे लाइ, पाणी जो बि किरायो ॾींदा आहियूं असां, जेकी बिजली इस्तेमालु थींदी हुनजो बि किरायो ॾींदा आहियूं, उन मां जेको गैस हूंदो असां उनजो बि किरायो ॾींदा आहियूं। सो अगर कोई भी लैंडलॉर्ड ये टे शयूं बेसिक एम्यूनिटीज़ बंद थो करे छॾे त टेनेंट चाहे त रेंट कंट्रोलर ॾे वञी करे इहे बेसिक एम्यूनिटीज़ खे रीस्टोर कराए सघे थो. अगरि बेसिक एम्यूनिटीज़ खे रीस्टोर न कंदो त हुनखे इम्प्रिज़मेंट ऐं फाइन बि थी सघे थी पई.
0: हुनखे
2: ख़बर हुजे त इन में जेल बि अथव,
0: मतिलबु बेसिक एम्यूनिटीज़ ताईं
2: सज़ा लॻी सघे थी ऐं फाइन बि लॻी सघे
0: थो. ठीकु,
2: त लैंडलॉर्ड खे इहो हाणे जेके ॿुधण वारा लैंडलॉर्ड आहिनि त उहे कोशिशि
0: करनि
2: त अगरि एग्रीमेंट कयो आहे त एग्रीमेंट में अगरि हुननि सपोज जॻह खे वेकेट कराइणो आहे, जॻह खे खाली कराइणो आहे, तव्हां फोर्सफुली जॻह वेकेट नथा कराए सघो कंहिंजी बेसिक एम्यूनिटीज़ बंदि करे,
0: बिल्कुल बि न.
2: अगरि ड्यूरिंग अगरि तव्हां उहा शइ करे छॾी त विद इन टाइम पीरियड में अगरि रेंट कंट्रोलर वटि अची हली वियो ऐं प्रूव करे वियो त हे असांखे फोर्सफुली इवेक्ट करनि था पिया ऐं एग्रीमेंट खे वायोलेशन करनि था पिया त हुनजो मतिलबु फाइन इम्प्रिज़मेंट लॻी सघे.
0: अच्छा शेवा साहिब, हिन ते हिकिड़ा कुझु मूं बि ॾिठा केसिस अहिड़ा त रेंट न ॾियण जी सूरत में जेको लैंडलॉर्ड आहे उहो तालो ॾेई पियो हले वञे ॿाहिरां ॿ टे ॾींहं, मतिलबु तालो चई रेंट ॾियो कोन पिया, घरां निकिरो कोन पिया त तालो ॾेई हलियो वियो पियो वञे. इनखे कीअं पिया ॾिसो?
2: इहा फोर्सफुल इविक्शन आहे न.
0: ओके,
2: तव्हांखे सभ खां पहिरियों हुनखे लीगल नोटिस ॾियणो आहे. ॾिसो, पीसफुल इविक्शन, फोर्सफुल इविक्शन,
0: सेक्शन 12 में इविक्शन ग्राउंड्स आहिनि, इन ते थोरी वज़ाहत.
2: पीसफुल इविक्शन, फोर्सफुल इविक्शन, इलीगल इविक्शन, फ़र्क़ु आहे न ॿिन्हिनि में. पीसफुल इविक्शन इहा हूंदी आहे वेन यूर कॉन्ट्रेक्ट हैज़ बिन कंप्लीटेड, यूर कॉन्ट्रेक्ट इज़ अबाउट टू बी कंप्लीटेड, तव्हांजो टेनेंसी एग्रीमेंट कंप्लीट थियण वारो आहे. हाणे टेनेंट चाहे त हुनखे कैरी ऑन करे, अगरि टेनेंट चाहे त हुनखे कैरी ऑन करे कॉन्ट्रेक्ट खे अॻिते खणी हली सघे थो. इलीगल छा हूंदो आहे? इलीगल इहे ई हूंदा आहिनि जेके पॉइंट्स, लाइट बंदि करे छॾणु, गैस बंदि करे छॾणु, पाणी बंदि करे छॾणु, ॼाणी ॿुधी हुनखे तंग करे छॾणु, या तालो भञी करे तालो हणी छॾणु, या सामान कढी करे ॿाहिरि फिटी करे छॾणु, या लैंडलॉर्ड जी टेनेंट जी एब्सेंस में हुनजी फैमिली मेंबर खे तंग करणु, इहो बेसिकली छा इलीगल आहे. फोर्स में छा थींदो आहे? जीअं हाणे फोर्स में सिर्फ़ु हिकिड़ो ई डिफरेंस आहे, जबरन कॉन्ट्रेक्ट जे दौरान, कॉन्ट्रेक्ट जे मिसाल एग्रीमेंट चइजे, एग्रीमेंट जे दौरान कंहिंखे तव्हां कढो, तव्हां हुननि जे ॿारनि खे डिस्टर्ब कयो, तव्हां हुननि जा सामान कढी करे ॿाहिरि फिटी करे छॾियो, तव्हां हुनखे मुसलसल फोनूं करे हरास कयो, थ्रेट कयो, इहो हूंदो आहे फोर्सफुल इवेक्शन.
0: अच्छा, इन इवेक्शन ते तव्हांजी ॻाल्हि कई फोर्सफुल, हाणे लैंडलॉर्ड खे जेको आहे त रेंट टाइमली मिले कोन थो, उहो कहिड़ो स्टेप वठी सघे थो?
2: लैंडलॉर्ड खे टाइम न, हा ॾिसो न, मां वंस अगेन अचां थो त डिपेंड करे थो त लैंडलॉर्ड जेकी इवेक्शन कराए थो कहिड़े पर्पज़ सां कराए थो. छा हुनजी इवेक्शन कराइण जो पर्पज़ बोनाफाइड आहे, पंहिंजे पर्सनल यूज़ लाइ थो कराए पियो, या हो जेको आहे न जॻह खे, जॻह डैमेज थी वई आहे, जॻह में जेको आहे न लीकेज थी वियो आहे, या जॻह जूं दीवारूं कमज़ोर थी वियूं, हाणे उहो रीकंस्ट्रक्शन कराइणु चाहे थो, या हुनजो इंटेंशन ई सिर्फ़ु इहो आहे त हाणे मां हिन किरायेदार मां जान छॾियां, मूंखे ॿियो किरायेदार मिले थो जेको हिन खां सुठो मूंखे किरायो ॾींदो, या मां हुनखे रीलेट कयां. सो डिपेंड करे थो त कहिड़े पॉइंट ऑफ व्यू सां जॻह खाली कराए थो.
0: ओके, अच्छा टाइम सफ़ा मुख़्तसिर आहे पाण वटि, हिकिड़ो इम्पोर्टेंट सवाल आयो आहे.
2: जी जी,
0: बासिर सूमरो साहब चवनि पिया त घर में कंहिं हादसे या नुक़सान जी सूरत में ज़िमेवारी कंहिं ते हूंदी, घर मालिक ते या किरायेदार ते? अक्सर ॾिठो आहे तव्हां छत जा छापड़ जेके अंदरि किरण शुरू थी वेंदा आहिनि या का बि अहिड़ी एक्टिविटी थिए जंहिंसां नुक़सान थिए, त ज़िमेवारी कंहिंजी आई आहे?
2: इहो बाबर वन सेकेंड डिपेंड करे थो त कहिड़ी सिचुएशन में थिया.
0: ओके,
2: छा उहो रिपेयर फोर्सफुल आहे, छा रिपेयर इंटेंशनल आहे? अगरि उहो डैमेज इंटेंशनल आहे त उहो टेनेंट ई हुनजो ज़िमेदार आहे.
0: ओके,
2: अगरि नेचुरल आहे, सपोज़ हाणे जे 2022 में बारिशूं
0: थियूं,
2: हर कंहिंजी जॻहियूं लीक करे वियूं, या दीवारनि में ॾार अची विया, या जे ॾींहुं टेनेंट शिफ्ट थियो हुनजे ॿिए ॾींहुं दीवार किरी पई, ठीकु आहे, त उन टाइम जेको सॼो जी सॼी ज़िमेदारी वञे थी उहा वञे थी लैंडलॉर्ड ते, छोकी नेचुरल आहे, हुनजो हुनमें को हथी न आहे. हाणे हिते टेनेंट आहे, पंहिंजी डबल स्टोरी अगरि हुन हिकिड़ो जॻह वरिती आहे, प्लस में हाणे हुन छा कयो, हिकिड़ो फंक्शन रखाए छॾियो, शादी जो फंक्शन, मेहंदी जो फंक्शन सपोज़, या छटीअ जो फंक्शन, हाणे मथे छत जी कैपेसिटी 50 माण्हुनि जी आहे, उते उहो सॼो 100 माण्हुनि जी कैपेसिटी, अचानक छत किरी पए, हाणे उहा गफ़लत कंहिंजी आहे? रिपेयरिंग जी गफ़लत टेनेंट जी
0: आहे.
2: सो डिपेंड करे थो त सिचुएशन कहिड़ी आहे, नेचुरल प्रोसेस थियो आहे या इंटेंशनली या नेचुरल प्रोसेस थियो आहे जंहिंजे करे नुक़सान पुॻो आहे जॻह ते.
0: ऐं हीउ सवाल असां करे चुका आहियूं, उन्हनि बि इहो ई पुछियो आहे त छा किरायो वक़्त ते ॾिनो वञे, हिन बावजूद बि ओचितो किरायो वधाए सघिजे थो या
2: न?
0: हाउ टू फाइल एप्लीकेशन हिन ते मुतालिक़ रेंट कंट्रोलर,
2: रेंट कंट्रोलर जी एप्लीकेशन असल में हिन सां रिलेटेड इहो आहे त प्रोसीजर इहो आहे त अगरि तव्हांखे कोई बि ग्रीवेंसिस आहे त रिटन फॉर्म में कंहिं बि पंहिंजे काउंसिल जे थ्रू तव्हां रेंट कंट्रोलर खे अप्रोच कयो. अगरि उहो तव्हां सां इवेक्शन सां इशू आहे, तव्हांजो अननेसेसरी हुननि किराया वधाए छॾियानि, फोर्सफुल इवेक्शन आहे या इलीगल इवेक्शन आहे, या अगरि हिकिड़ो माण्हू सपोज़ टेनेंट आ अगर उन चयो मूंखां मालिक जॻह वरिती आहे की मां हिन जॻह खे रिपेयर कराईंदुमि ऐं रिपेयर कराए मां हिन खे जेको आहे न नए तरीक़े सां ठाराए पोइ तव्हांखे वरी मां हिते विहारींदुमि पर उन छा कयो जॻह बि न ठाराई पर मुंहिंजी जॻह ते ॿिए माण्हू खे विहारे छॾियो हिते ठीकु आहे उन अगरि अहिड़े क़िस्म जा को केस थियनि था पिया त उन में तव्हां रेंट कंट्रोलर खे अप्रोच कयो ऐं अगरि तव्हां मेलाफाइड शो करे था वञो टेनेंट जो इन जो लैंडलॉर्ड जो त उन ते रेंट कंट्रोलर हिकिड़ो समरी प्रोसीजर हलाईंदो जेकॾहिं अगरि एट डिटेल्ड आहे त हुन ते हिकिड़ो फुल ट्रायल हलंदो सो हिन सिस्टम में त तव्हांजा जेके बि सीनियर सिविल जजिस आहिनि जेके तव्हांजे जुरिसडिक्शन जा या सिविल जजिस जंहिंजी एटलीस्ट प्रैक्टिस थिए जंहिंजी जेकॾहिं जॉब जी एक्सपीरियंस 3 years हुजे उहे तव्हांजा रेंट कंट्रोलर सां ॾाईंदा आहिनि उन्हनि वटि इहो पूरो प्रोसीजर हलंदो ऐं इहे तव्हांजा इशूस खे सॉर्ट आउट करे कोई बि फ़ैसिलो हूंदो या त तव्हांखे पोज़ीशन वापसि ॾियारींदा या लैंडलॉर्ड खे बाउंड करे छॾंदा त अननेसेसरी करायो न वधाए फोर्सफुल इवेक्शन न कर या एग्रीमेंट ख़तमु थियण ताईं वेट कर हिननि जो
0: ऑल राइट अच्छा शेबा साहब लास्ट में अवां असांजे लिसनर्स के असांजे व्यूअर्स के कहिड़ो मशवरो ॾींदा जंहिं टॉपिक ते असां अॼु ॻाल्हायोसीं कहिड़ा एहतियात करणु तोड़े उहे टेनेंट हुजे या लैंडलॉर्ड हुजे
2: इहेई मां हिनखे मशवरो ॾींदुमि बाबर के एग्रीमेंट जे टाइम हर शइ खे सोचे सम्झे ऐं ॾिसी करे तव्हां एग्रीमेंट कयो के बाद में अचण जे टाइम तव्हांखे ॾुखियाप न थिए
0: ओके
2: ठीकु आहे तव्हां जॻह विज़िट ते वञो था त विज़िट में तव्हां पंहिंजी हर शइ खे या तव्हां हुनजी वीडियोज़ ठाहे छॾो या पिक्चर्स ठाहे छॾो ऐं प्लस में तव्हां ॾिसो त हुन में बेसिक शयूं आहिनि या न आहिनि बेसिक शयूं हुन में आहिनि या न आहिनि ठीकु आहे अगरि हुन में तव्हांजी गैस जी शइ बि अवेलेबल आहे पाणी जी बि अगरि अवेलेबल आहे ऐं इलेक्ट्रिसिटी बि अगरि हुन में अगरि हुन मां काई बि शइ कटियल आहे त उहा मकान मालिक खे चयो असांखे फिक्स करे ॾियो छत टुटल आहे फिक्स करे ॾियो दीवार टुटल आहे फिक्स करे ॾियो त बाद में तकलीफ़ न थिए रेंट ऑलरेडी ॻाल्हाए छॾो प्रेमिसिस तव्हां लोकेलिटी में बि मालूम करे छॾो त छा किराया साॻिया ई आहिनि किरायो तव्हां खां वधीक त नथो वरितो वञे ॿियो लैंडलॉर्ड जो करेक्टर ऐं प्लस में लैंडलॉर्ड खे खपे त टेनेंट जो करेक्टर बि ॾिसी वठे कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे जॻह त वठी छॾंदाऊं त बाद में हुनजो पर्पज़ ग़लति इस्तेमालु थींदो आहे इहो सॼो जो सॼो पोइ छा थींदो आहे नुक़सानु थींदो आहे लैंडलॉर्ड खे इज़त हुनजी ख़राबु थींदी आहे त जॻह हिकु शइ जे लाइ वरिती वई ऐं उते कारोबार ॿियो शुरू थी वियो ठीकु आहे या अगरि उहो जेको टेनेंट आहे जेको हुते मसवाड़ ते अची करे वेठो आहे छा उहो प्राइवेट नौसियान सां क्रिएट नथो करे को अहिड़ो गफ़लत वारो कर्म त नथो जेको सोसाइटी जे अगेंस्ट हुजे सो इन्हनि शयुनि खे पंहिंजी नज़र में रखी करे तव्हां पोइ वञी करे तव्हां काई बि जॻह मसवाड़ ते ऐं लैंडलॉर्ड खे बि चवंदुमि हे सिर्फ़ु रेंट प्रेमिसिस सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु टेनेंट जा राइट्स खे प्रोटेक्ट नथो करे इहो साॻा ई राइट्स लैंडलॉर्ड जा बि प्रोटेक्ट करे थो उन्हनि खे बि उन्हनि शयुनि खां बचायो थो पियो त अगरि मिसाल टेनेंट जी तरफ़ां गफ़लत थी वञे त लैंडलॉर्ड जॻह खे कीअं वेट कराए सघे थो अगरि लैंडलॉर्ड खां गफ़लत थी वञे त पंहिंजो टेनेंट राइट कीअं थो वठी सघे दिस ऑर्डिनेंस इज़ फॉर बोथ ॿिन्हिनि जो मां जीअं असां शुरू में डेफिनेशन में पढ़ियोसीं त दिस इज़ क्रिएटिंग द बैलेंस बिटवीन द टू हिकिड़ो एग्रीमेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू सां ॿिन्हिनि में हिकिड़ी हार्मोनी क्रिएट करण जे लाइ दिस ऑर्डिनेंस केम इन टू बींग
0: ऑल राइट शेबा साहब थैंक यू सो मच
2: वेलकम मां माज़रत कंदुमि त ॿ दफ़ा मां साइलेंट ते फोन रखियो कॉल्स लॻी वियूं उहे बि इंपोर्टेंट
0: कॉल्स यादि आयो असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि तव्हां खां अगरि लीगल कंसल्टेशन वठणु चाहिनि
2: जी
0: त उन लाइ नंबर तव्हां असांजे
2: बिल्कुलु मां आई एम विलिंग टू शेयर माई नंबर 03081244306 माना 03081244306
0: All right.
2: That's my number.
0: Thank you so much. So, listeners, program जे वक़्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो अॼु जे प्रोग्राम में असीं टेनेंट ऐंड लैंडलॉर्ड जा जेके आहिनि लीगल राइट्स आहिनि उन मुतालिक़ ॼाणियोसीं स्पेशली हिकिड़ी ॻाल्हि मां बिल्कुलु पॉइंट आउट तव्हांखे कराईंदो वञां त बेसिक एम्यूनिटीज़ जेको आहे न लैंडलॉर्ड कंहिं बि सूरत में टेनेंट जूं जेके आहिनि उहो नथो कटे सघे सेकेंडली यस एंड सेकेंडली रेंट जेको आहे न अचानक बिल्कुलु बि नथो वधाए सघे ऐं थर्डली जेको आहे न बग़ैर कंहिं वजह जे जेको आहे त इवेक्ट नथो करे सघे इहो असां इन ऑर्डिनेंस में अॼु ॼाणोसीं उमीद आहे अव्हांखे बि ख़बर पइजी वई हूंदी ऐं जेकॾहिं इन जी भनकड़ी थिए पई इन जे अगेंस्ट वञे पियो लैंडलॉर्ड त जेको आहे त रेंट कंट्रोलर मौजूदु आहे किथे हूंदा आहिनि साईं जन
2: सर जुरिसडिक्शन जा जेके जजिस सीनियर सिविल जजिस या सिविल जजिस सेशन कोर्ट
0: सेशन
2: कोर्ट ऐं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
0: ऑल राइट
2: सेशन कोर्ट फॉर द क्रिमिनल केसेस
0: अच्छा इन जी एप्लीकेशन
2: डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द सिविल जजिस
0: एडवोकेट की जरूरत आ या इन पर्सन
2: काउंसिल से थ्रू वनी सके था इन पर्सन भी वनी सके
0: इन पर्सन भी वनी सके तो सो उम्मीद है लिसनर्स तवां जे लिए आज जो सेशन डाडो फ्रूटफुल साबित थियो हुंदो अगले प्रोग्राम तई पंहिंजे मेज़बान बाबर शेख ऐं असांजे महिमान एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब खे ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैरु

थुलमे गोठाणे के उताक ते कतल कंदड़ वडेरे जो पुट के पुलिस गिरफ्तार करण में नाकाम। मकतूल गोठाणे अजमल उर्फ नोमान मेमण जी जनाज़े नमाज बाद तदफीन। वारिसन मूजिब वडेरे सईद अहमद सरकी के पुट में नौजवान के बंगले ते घुराए कतल किया। पुलिस बिलाल सरकी के गिरफ्तार न करे रही है।

0: Edshot IO training is Japanese testing machine and the adjustment. Computerized Japanese machine zariye kai baniye thi. Honda J qualified technician ji zere nigrani. Edshot Autos, Halani Road, Mehrapur. Rabte 03208 00.
1: फैक्ट्री डिग्री रोड मेरा जगह जो इंच में पलम में फौजी भाल है फौजी अब्दुल करीम का एकड़ 56 पीर अहमद 0703।
2: क्या देख रहे हो सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपके किसी तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। सुबह

0: कंबट में बिल्कुल ईअं ई आहे साईं
1: जी जी साईं
0: हे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जे तरफ़ बि वेंदासीं ॾिसो किथां जो कॉलर आहे अस्सलाम वालेकुम जी अदा केर साहब पियो ॻाल्हाए नवाब शाह जो मशहूरु डॉक्टर हैदराबाद जो मशहूरु कराची जो इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर हिते मैरापुर में वेठो आहे तव्हां वरी नवाब शाह था वञो पिया डॉक्टर वॾा वेठा आहिनि छा जो गंबट ऐं राणीपुर जा तकरीबन गंबट में बि वेहंदा आहिनि साॻियो वरी राणीपुर में बि वेहंदा आहिनि उनजे बावजूद जेको आहे उतां वारा दवाऊं वठी वठी उते माण्हू थकिजी पवंदा पोइ वरी हिते था अचनि पिया डॉक्टर साहिब वटि जी इलाज कराईंदा पिया इन मां अंदाज़ो लॻायो हाणे तव्हां ओॾे वेंदो पोइ तव्हांखे सूर कीअं छॾींदो अंगारे त कोन्हे को बाक़ी हफ़्ते जा सद आहे सुबुह जो 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर।

0: ॾंदनि जो प्रॉब्लम आहे, या चाहे कुनर जो सूरु आहे, या कंहिंखे पित्ते जी पथरी आहे, या कंहिंखे गुर्दे जी पथरी आहे, या कंहिंखे बवासीर आहे, या कंहिंखे प्रोस्टेट ग्लैंड जो मसइलो आहे, या कंहिंखे हर्निया जो मसइलो आहे, उन्हनि जो अलहमदिल्ला शाफ़ी इलाजु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते मौजूदु आहे, जंहिंमें असां होम्योपैथिक जी ई प्योरली होम्योपैथिक दवा, जंहिंमें ख़ासि करे असां मर्ज़ जे मुताबिक़ जर्मनी जी दवा ॾींदा आहियूं, जंहिंसां अलहमदिल्ला पेशंट बिल्कुलु सिहतयाब शिफ़ायाब थियो वञे थो कुझु अरसे में। यानी कुझु अरसे जो चवण जो मक़सदु इहो ई आहे, ज़ाहिरियात जिते पेशंट जो ऑपरेशन थिए उते ज़ाहिरियात उन केस में 3 महीना 4 महीना दवा ज़रूरु रहंदी आहे ऐं उहो पेशंट अलहमदिल्ला ठीकु थी वेंदो आहे। पर जेको पेशंट ज़ाहिरियात 8 साल 10 सालनि खां कंहिं बीमारी में मुबतला हुजे ऐं उहो जेकॾहिं 2 महीननि या 3 महीननि में ठीकु थी वञे त हीअ दवा महांगी न आहे, हीअ दवा आसान आहे। ऐं मां पंहिंजे ॿुधंदड़नि ताईं बि इहो ई मैसेज कंदुसि त असांजी होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को। होम्योपैथिक दवा या पाकिस्तान छा पर दुनिया में जेको असां हिन जो इलाजु ऐं असां वटि तमाज जो पिन जो एतिरो अवेयरनेस हिते असांजे इलाइक़े में न हूंदी या कराची हैदराबाद में, लेकिन
1: तमामु घणी जेको आहे सो माना होम्योपैथिक मशहूरु थी चुकी आहे, छो जो दवा खां लाइलाज थी करे माण्हू अचनि था, उनजो होम्योपैथिक में इलाजु मौजूदु आहे।
0: होम्योपैथिक में इलाजु बग़ैर कंहिं सुई जे, बग़ैर कंहिं थैलीअ जे, बग़ैर कंहिं चीर फाड़ जे, बग़ैर कंहिं सर्जरी जे ऐं बिल्कुलु जेको आहे सो बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे हिकिड़ी दवा साफ़ शिफ़ाफ़ अव्हां खे बग़ैर कंहिं नुक़सान जे मिली वञे त अलहमदिल्ला उहो इलाज तमामु बहितर इलाज आहे।
1: ॿियो कॉलर लाइन जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: साईं, मुंहिंजा केर साहब पियो ॻाल्हाए?
2: सर मां तव्हां खां ॻाल्हायां थो कटनी
1: वारा। जी दादा, छा पुछंदा डॉक्टर साहब?
2: सर राज बुखार थो थिए ॾाढो इलाही टाइम थी
1: वियो। छा थियो?
0: बुखार,
2: बुखार थो थिए राति जो।
1: अच्छा, राति जो बुखार थो अची वञे। पोइ डॉक्टर साहब खां इलाजु वठो, इनशाला जान छुटी वेंदी। तव्हांखे बुखार हॾनि में बीठो ई बीठो आहे, छॾे ई नथो। जेको अंदरि में बुखार बीठो हूंदो, ॾींहं जो कुझु झटो थींदो हूंदो, वरी राति जो ज़्यादा थींदो हूंदो, ईअं ई थिए थो न? ॿुधो एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो न त रूबरू ॾेखारे वञो, डॉक्टर साहिबु इलाजु कंदो, इनशाला जान छुटी वेंदी। जी सर,
0: हा बिल्कुलु आहे। देखे चवंदासीं रूबरू ॾेखारे वञनि, मलेरिया पंहिंजी टेस्ट करण ऐं पोइ रूबरू ॾेखारे वञनि, वधीक बहितर रहंदो।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि चीह मेरापुर एफ एम 94 जो, आवाज़ तव्हांजे समाधान ते पहुचे पियो। डॉक्टर मंसूर हुसैन मेमन साहब सिंह जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। हर अरबा ख़मीस जुमे छाछर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटा पेट्रोल पंप कोरडी कबीर रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। ख़ुश आमदी चऊं था भाउ खे। भाउ छा साड़ो जलन थो रहे पियो पिननि में?
2: जी जी मुंहिंजा।
1: ॿुधो एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु, तव्हांखे ॿुधाईंदो न त रूबरू ॾेखारे वञे, वधीक बहितर। जी सर,
0: जी बिल्कुलु। देखे चवंदासीं ज़ैतून जो तेल, ओलिव ऑयल जेके असां चवंदा आहियूं, तमामु हिकिड़ो अक्सीर ऐं तमामु बहितरीन, जंहिंजो ज़िक्र क़ुरान शरीफ़ में बि मौजूदु आहे ज़ैतून जो। त ज़ैतून जो जेको तेल हूंदो आहे उहो अलहमदिल्ला तमामु शाफ़ी आहे अहिड़नि मसइलनि में। उनजी मालिश न आहे करणी, सिर्फ़ु उनजो अप्लाई करणो आहे, लॻाए छॾिणो आहे। अलहमदिल्ला उन सां काफ़ी सारो अफ़ाको अची वेंदो आहे, लेकिन अंदरूनी तौर ते ई हिकिड़ो एक्सटर्नली तौर ते कमु कंदो ऐं अंदरूनी तौर ते ज़ाहिर या कंहिं वजह सां ई, वजह जे करे ई जेको आहे इहा तकलीफ़ थींदा, त उनजे करे उनजो इलाज बि तमामु ज़रूरी आहे। हीअ हिकिड़ी इहो बि करे इलाज लाइ असांजी क्लिनिक ते ज़रूरु अची ऐं रूबरू ॾेखारियो।
1: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब वटि जेके अधरंगे वारा उहे किरी पिया, उहे घुमिया बि सही। डॉक्टर साहब उन्हनि खे घुमायो, चओ था दिलि वारी ॻाल्हि, दिलि वारी बि इनशाला तव्हां सिहत, तव्हांजो दिलि जी तव्हांजी धड़कन तेज़ थींदी हूंदी, तव्हांखे साह ते तकलीफ़ थींदी हूंदी। डॉक्टर साहब उहे बि अलहमदिल्ला सही करे छॾिया। वधीक एफ एम डॉक्टर साहब तव्हांखे ॿुधाईंदो, उमिरि घणी आहे ऐं घणो टाइम थियो आहे अधरंगे खे फालिज खे?
2: 2010 में
1: फालिज थियो आहे, माना पुराणो आहे।
2: बढ़िया जेल में हरकत ढंग एक

0: कम घुमा तो सही बा एकड़ो कम न तो करे
1: हां
0: रे बाबा बा कम न तो करे टल रे घुमा तो आपको भी हां तमो
1: बदन आही पुरानी बीमारी है पर तो एक दफो जरूर डॉक्टर साहब के दिखारियो
2: अंगारे
1: खां अलावा सभी मौजूद बिल्कुल अंगारे वाले ढी मोकल होंगी बाकी ढी सब मौजूद आ सुबह जो दहे खां वठी शाम जो पंजे वगे ताईं बिल्कुल अलहमदुल्ला इलाज अथस
2: बिल्कुल ट्रीटमेंट मौजूद है बिल्कुल अच्छा एक जहन में पेशेंट रखे टे ढा स्पेशली जुमे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी वो चेकअप फीस फ्री हों दवा मरीज के वी पवी है बकाया जो है सो बया डी भी क्लिनिक मौजूद होंगे पर टे ढी ये हाईलाइट तमाम जरूरी सारे मरीज असा मुस्तफिद चेकअप फीस फ्री
1: गरीब मेरी सहूलत है फीस जी
2: जी सर बकाया बया डी सूमर जो ढी अरबा जो ढी खमीस जो ढी भी अस क्लिनिक मौजूद होंगे अंगारे जो ढी छुट्टी होंगी क्लिनिक बंद होंगी है एक पेशेंट के जहन में गाल हो अलावा असो नंबर अट मौजूद है जैसे भी तुम अचो या टोकन नंबर हासिल करण के लिए या का मालूम हासिल करण के लिए इन नंबर से कॉन्टेक्ट करें जरूर जो अची सकता है जी सर एक दफो नंबर बीहर अस जरूर अनाउंस कर
1: 0301-96-8051 डॉक्टर साहब जो नंबर है अवं कें भी वक्त राबो कर हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर सूमर ते डॉक्टर साहब मौजूद हुआ सुबह दह का शाम पंजे वगे तई तमाम घनी मेहरबानी डॉक्टर साहब तुम असो तो कीमती वक्त दिनों सामिन प्रोग्राम जो वक्त भी पैं पुजाणी की तरफ ही वे पो इन अजोक प्रोग्राम जो भी वक्त पे अचे तो पुजाणी से जैसे भी दुआन के लिए हाथ खड़ो तो असें दुआन में जरूर याद रखो बे प्रोग्राम से ींदा इजाजत अल्लाह नगहबान अल्लाह वाही।

खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद।

0: होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद बा अख्तियार इदशाक ऑटोज होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: जो चवण आए थे गुजर हफ्ते का अज तई एचआईवी जा 25 नवा केस जाहिर थे 8 बारन के अस्पताल जी आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया वो है।

मरीजों जो गढ़ बणजी वही। अस्पताल अमले के बिन मानु समेत 25 जन के एचआईवी की तस्दीक एक निगरी हयाती विंजाई चुकी। सेहत खाते जो चवण है गुजरल हफ्ते का अज तई आकारियक भराई ISPR मौजिब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ईरान जो इंतई अहम दौरों मुकम्मल कर फील्ड मार्शल सालिसी की कोशिश तौर ईरानी क्यादत से मुलाकातू कय। मुलाकात दौरान खत्े में चिकताड़ घटाण ए तामीरी राबतन के हथी डेण से ख्याल की दे वी। ईरानी क्यादत इलाकई मसलन के पुरमन हल लाए पाकिस्तान तामीरी किरदार के सारायो। फील्ड मार्शल जो दौरों खत्े में जारी चिकताण के खात्मे लाए सिफारती कोशिश हिस्सो हो। मुलाकात में ईरान अमरीका हतमी माहिदे डां हकारी अग भराई थी है।

अमरीकी परडेही वजीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु अगभराई थी आहे। उमीद त ईरान जंग जे ख़ात्मे वारो वाइदो अॼु ई क़बूले वठे। थी सघे थो त अॼु सुभाणे या कुझु ॾींहनि बाद असां वटि ऐलान लाइ कुझु हुजे। हुन खां अॻु मार्को रूबियो चयो त फील्ड मार्शल सां लगातार राब्ते में आहियूं। ईरान सां जल्द वाइदे जी उमीद आहे।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ए कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदल सानी विच में फोन ते राबतो खिते की मौजूदा सूरतहाल ते ख्यालन की डेवट अमरीका ए कतर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशन की हिमायत के वरजायो काबरू इदारे मूजिब बिन्हीं अगवानन मसलन के हल लाए फाल सिफारती राबता बरकरार रखने की जरूरत ते गाल बोल कई सामुंडी रस्तन के तहफुज ए स्ट्रेटेजिक आबी रस्तन की सलामती यकीनी बनाने ते जोर आलमी व्यापार ए तवानाई सप्लाई निजाम के बिना रंडक जारी रखने वाली अहमियत ते भी जोर दिनो वो कतरी वजीर आजम जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची सा फोन ते राबतो अमरीका ईरान में जारी गालियन में थींदड़ अग भराई ते गालियूं कतरी वजीर आजम अब्बास इराकची सले जो हल गालियन जरिए कढ़ण ते जोर भरियो अब्बास इराकी सूरतहाल ते उमान जे हम मनसब सां भी ॻाल्हाई सिफारती कोशिशन ते गौर कयो वियो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुची वियो एयरपोर्ट पहुचण ते वज़ीर आज़म जो चीनी इख़्तियारनि आदर भाव कयो वज़ीर आज़म चीनी सदर वज़ीर आज़म ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो पाक चीन लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं वज़ीर आज़म चयो त चीन सां मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार खे हथी ॾियण जा ख़्वाहिशमंद आहियूं शानदार आदर भाव करण ते ज़ी जियांग सूबे जी क़यादत जो थोरायतो आहियां

मेरिट ते औरतुन में पिंक स्कूटीज विरायूं पई वञन औरतुन के तरबियत लाइसेंस ऐं मुफ्त में स्कूटीज ॾेई रहिया आहियूं। हैदराबाद में औरतुन के पिंक स्कूटीज ॾियण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सीनियर वज़ीर शजीर इलाम मेवण चयो त सिंध हुकूमत वॾा मनसूबा ॾिना सूबे ऐं मुल्क जी तरक़ी लाइ कम जारी रखंदासीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीर इलाम मेवण हैदराबाद में 200 औरतुनि में मुफ़्त पिंक स्कूटीज बि विरायूं।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, वे फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती जड़ी।
6: ये

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
1: अदा? नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कज

0: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थी
1: ना दा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराने ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेट हलंदी
0: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस बुधा
2: ऑफिस जी मेरा पर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8743
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

में चिकताण घटाइण ए तामीरी राबतन के हथी डेण से ख्यालन की डे वी ईरानी क्यादत इलाकई मसलन के पुरमन हल लाए पाकिस्तान तामीरी किरदार के सहारा फील्ड मार्शल जो दौरों खिते में जारी चिकताण के खात्मे लाए सिफारती कोशिशों जो हिस्सो हो। मुलाकात में ईरान अमरीका हतमी मुहिदे ना हाकारी अकबराई थी है। अमरीकी परी वजीर मार्को रोबियो है तो ईरान से गाल में कुछ अकभराई थी है। उम्मीद त ईरान जंग के खात्मे वो माहिदो अज ही कबूले वे सके तो अज सु या कुछ दिन बाद असट ऐलान लाए कुछ हुए। इन अग मार्को रोबियो तो फील्ड मार्शल से लगातार राबते में आयु ईरान से जल्द माहिदे की उम्मीद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ए कतरी अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी विच में फोन से राबतो खिते की मौजूदा सूरत हाल के ख्याल की डे अमरीका ए कतर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत के वर्जाय खबरू इदारे मूजिब बिन्हीं अखबारों मसलन के हल लाए फाल सिफारती राबता बरकरार रखने की जरूरत से गाल बोल कई। सामुंडी रस्तन के तहफुज ए स्ट्रेटेजिक आबी रस्तन की सलामती यकीनी बनाने से जोर आलमी व्यापार ए तवानाई सप्लाई निजाम के बिना रंडक जारी रखने वाली अहमियत से भी जोर दिनों वो। कतरी वजीर आजम जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची से फोन से राबतो अमरीका ईरान में जारी गाल में थीदड़ अखबराई से गालियों कतरी वजीर आजम अब्बास इराकची थे मसले जो हल गालियन जरिए कढ़ण से जोर भरियो। अब्बास इराकची सूरत हाल से उमान के हमन सब से भी गाल बोल कई सिफारती कोशिशों से गौर किया।

खैरपुर जिले अंदर एचआईवी में खतरनाक हद तई वाद। गंबट जिम्स अस्पताल भी एचआईवी मरीजों को गढ़ बन वही। अस्पताल अमले के बिन मानून समेत 25 जन के एचआईवी की तस्दीक एक निगरी हयाती विन चुकी। सेहत खाते जो चवण है गुजरियल हफ्ते का अज तई एचआईवी जहा 25 नवा केस जाहिर थ अठ बार के अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया हो जिते एक निगरी फोत थी वही। सेहत अख्तियार मूजिब गम्स अस्पताल की बिन नर्सिंग पैरामेडिकल अमले के मानून में भी एचआईवी जाहिर थे बाद अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल गैर महफूज तिबी तरीकन बाबत खर्चा बढ़ी गया है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-5569-0359-0300-5569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 आई 0242-460100
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तेहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
8: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
9: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

सही कंदुसि जेको अमरीका चाहे थो। वॾे ख़बरू इदारे राइटर्स मूजिबि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अॼु पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर ऐं मिस्र जे सरबराहनि सां टेलीफोनिक राब्तो कंदो। ईरान सां माहिदे ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी।

खैरपुर जिले अंदर एचआईवी में खतरनाक कंबट जी गिम्स अस्पताल भी एचआईवी मरीजन जो गढ़ बनती वही अस्पताल अमले जी बिन मानून समेत 25 जन के एचआईवी जी तस्दीक एक निगरी हयाती विंदाई चुकी सेहत खाते जो चवण है गुजरल हफ्ते का अज ती एचआईवी जा 25 नवा केस जाहिर थे 8 बारन के अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया वो हो जिते एक निगरी फौत थी वही सेहत अख्तियार मुजिब गेम्स अस्पताल की बिन नर्सिंग ए पैरामेडिकल अमले के मानून में भी एचआईवी जाहिर थियण बाद अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल ए गैर महफूज तिबी तरीकन बाबत अच्छा वधी विया आहिनि। बिन महीनन दौरान 125 केसेस रिपोर्ट थी चुका।